नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई

शिक्षा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजे रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम

0: से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि अधिनियम
1: लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित 9वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन में श्री क्वात्रा ने कहा कि ये परिवर्तन मजबूत आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों से प्रेरित है। श्री क्वात्रा ने इसका श्रेय भारत के घरेलू आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों को दिया। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल धीरज सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख रहा। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 428 अंक की बढ़त के साथ 76,906 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 137 अंक चढ़कर 24,003 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay.

कुछ रिश्ते छांव की तरह होते हैं, कुछ यादें तुलसी के पौधे सी महकती हैं, कुछ बातें रसोई से उठती खुशबू की तरह मन में बस जाती हैं। घर इन्हीं से बनता है और आंगन इन्हीं से आबाद होता है। नमस्कार दोस्तों, 100.1 MHz FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर आंगन और इसी के साथ आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। आज आपके साथ इस सफर में हम सफर रहूंगी मैं आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। तो आइए जिंदगी की इसी गर्माहट और साथ ही मौसम की इसी खूबसूरती को महसूस करते हैं हमारे घर आंगन में।

फिल्म सत्ते पे सत्ता से आप सुन रहे थे आशा भोसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाज में ये गीत। दोस्तों, कहते हैं कुछ रिश्ते उम्र के साथ बदल जाते हैं, लेकिन कुछ यादें कभी पुरानी नहीं होती। आज कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसे ही सवाल से करते हैं जिसका जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, क्या आज भी आपका अपने बचपन के दोस्तों से संपर्क है? क्या कभी अचानक किसी पुराने दोस्त का फोन आया और बरसों पुरानी यादें ताजा हो गई? या फिर जिंदगी की भागदौड़ में वे दोस्त कहीं पीछे छूट गए, लेकिन उनकी यादें आज भी आपके साथ हैं? तो हमें लिख भेजिए ना अपने बचपन के किसी ऐसे दोस्त की कहानी जिससे जुड़ी कोई याद आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती हो या आंखें नम कर जाती हो। आपका जवाब हम ईमेल के माध्यम से जरूर जानना चाहेंगे। हमारा ईमेल आईडी तो आपको पता ही है ना? जी हाँ, वो है fmgoldga@gmail.com। तो इंतजार रहेगा आपकी खूबसूरत ईमेल्स का और साथ ही आपके और आपके दोस्त के इस खूबसूरत रिश्ते की कहानी का भी।

जी हाँ दोस्तों, फिल्म याराना से आप ये गाना सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। और आपका और हमारा याराना भी यहाँ पर कायम रहता है। जी हाँ, किसके जरिए और किसके माध्यम से, वो है हमारा ईमेल आईडी जो है fmgoldga@gmail.com। और आज हम आपसे जानना चाहते हैं आपके बचपन के ऐसे किसी दोस्त के बारे में, ऐसी किसी सहेली के बारे में जो आपसे बहुत समय बाद दोबारा मिली, या फिर ये भी हो सकता है कि बचपन से लेकर आज तक वो दोस्ती कायम है और वो लगातार और ज्यादा गाढ़ी होती जा रही है, जैसी आपकी और हमारी दोस्ती भी लगातार लगातार गाढ़ी हो रही है और परिपक्व भी हो रही है। तो बस देखिए हमारे साथ कौन जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मोतीनगर नई दिल्ली से नवीन भाटिया। लिखते हैं, 10th में पढ़ते थे मनीष सैनी और सुनील सैनी, तो काफी साल बाद वो मुझे लास्ट ईयर मिले तो आंखों में खुशी के आंसू आ गए। क्या बात है। देखिए ऐसा ही होता है, क्योंकि जब आप दोस्तों से मिलते हैं ना, और अगर इतना जबरदस्त आपका रिश्ता उनके साथ हो और बचपने का जो एक मासूम सा रिश्ता होता है वो जीवन भर अगर बना रहे तो क्या बात है ना। क्योंकि इस तरह से तो दोस्तों के साथ लगातार बने रहना हमारी खुशकिस्मती है, और आप बहुत खुशकिस्मत हैं नवीन जी कि के साथ आपके बचपन के दोस्त दोबारा जुड़े। तो हम भी चाहेंगे हमारे बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़े और अपने किस्से, अपनी बातें, अपनी यादें हमारे साथ साझा करें। दोस्तों, बचपन के दोस्त हमारी यादों का हिस्सा होते हैं, उसी तरह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अगर जीवन को स्वस्थ रखना है तो प्रकृति का स्वस्थ रहना भी उतना ही जरूरी है। संयोग से आज से वन महोत्सव सप्ताह की शुरुआत हो रही है, और आज यानी 1 जुलाई, जी हाँ, और आज ही के दिन हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे भी मना रहे हैं। यानी आज का दिन हमें दो अनमोल उपहारों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर देता है, एक जो हमारी सेहत की रक्षा करते हैं और दूसरा जो हमें स्वच्छ हवा, जल और जीवन प्रदान करता है। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस आप सभी जानते हैं दोस्तों, भारत में हर वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन महान चिकित्सक, शिक्षाविद और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में मनाया जाता है। उनका जन्म और निधन संयोगवश आज ही के दिन यानी 1 जुलाई को हुआ है, और ये दिन उन सभी चिकित्सकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है जो दिन रात हमारी सेवा में समर्पित रहते हैं। उनके ज्ञान, संवेदनशीलता और सेवाभाव के कारण अनगिनत लोगों को नया जीवन और नई उम्मीद मिलती है। इसी के साथ आज से 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह भी मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत ना वर्ष 1950 में हुई थी, और वर्षा ऋतु आप जानते हैं बस उसका आगमन हो ही चुका है और मानसून की आमद हो चुकी है, तो वर्षा ऋतु को वृक्षारोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, और इसीलिए इस सप्ताह देश भर में पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब आप भी जानते हैं कि पेड़ जो होते हैं वो केवल हमें ऑक्सीजन नहीं देते बल्कि जल संरक्षण, जैव विविधता, मिट्टी के संरक्षण और संतुलित पर्यावरण के लिए भी बहुत जरूरी हैं। तो बस आज ही का ये जो दिन है, यह हमें एक बहुत सुंदर संदेश देता है कि अपने डॉक्टरों का सम्मान कीजिए और धरती को हरा भरा बनाने में अपना योगदान भी दीजिए, क्योंकि स्वस्थ जीवन के लिए एक कुशल चिकित्सक और स्वस्थ पर्यावरण दोनों का साथ होना बेहद जरूरी है।

फिल्म साजन बिना सुहागन में आप सुन रहे थे यशुदास की आवाज में ये गीत। दोस्तों देखिए, हमारे साथ हमारे और भी दोस्त जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं उग्रसेन यादव, नई दिल्ली से लिख रहे हैं। सोनाली जी, आपको हमारा सप्रेम नमस्कार। आपको भी हमारा नमस्कार उग्रसेन जी। आप लिखते हैं कि बचपन की कोई याद जो कभी भी भूल नहीं सकता। अच्छा, बचपन की वो याद जो कभी भी भूल नहीं सकते, वो है उस समय जब हमें किसी भी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता था। मैं और मेरा दोस्त 4:30 बजे चले जाते थे बाग में एक्सरसाइज के लिए। पर जब आज सोचते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी हम हर पल साथ रहते थे। अरे, आप अभी उनको सोच के

सुना भाई, ये देखिए कौन कितनी दूरी पर है। आजकल तो सोशल मीडिया, डिजिटल दुनिया, आपके हाथ का आपका फोन, सब इतनी फटाफट आपको आपके दोस्तों के साथ मिला सकते हैं। बस उनको एक बारी फोन कीजिए, उनसे एक बार जाकर मिल लीजिए अगर पास में कहीं रहते हैं। और फिर आपने बताया कि आप उन्हें याद कर रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो इस जरिए भी तो आप अपने दोस्त के साथ ही है ना। तो आप उनसे बिल्कुल बिना किसी झिझक के, बिना देरी किए एकदम जाकर के मिल लीजिए, फोन कर लीजिए और अपने उसी दोस्त को दोबारा अपने जीवन में ले आइए। और अभी भी अगर आप सुबह 4:30 बजे सैर करने, व्यायाम करने बाग में जाएंगे, तो आप दोनों के लिए भी उतना ही अच्छा रहेगा और दोस्ती और ज्यादा प्रगाढ़ होगी, है ना। और देखिए अब हमारे साथ कौन जुड़े हैं, ये है राजू अग्रवाल, केशव, प्रियांशी, गांव चौधरी व जिला हिसार, और इनको हमारे प्रोग्राम सबसे अच्छा लगता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमें बहुत अलग चीज लिख रहे हैं। देखिए ये लिख रहे हैं कि एक महिला चाहे बूढ़ी हो जाए फिर भी बाबुल का कच्चा आंगन कभी नहीं भूलती। रही बात बचपन की, तो मैं हर वक्त बचपन की बातें दूसरों को बताता हूँ, बचपन याद करने से सुकून मिलता है। बहुत अच्छी बात है, बचपन को तो हमेशा याद करते रहना चाहिए। उन पलों को कौन भूलना चाहता है जब हम एकदम बिना किसी परेशानी के, बिना किसी सोच के लगातार अपने दुनिया में मगन रहते थे, खेलते थे, कूदते थे और एकदम माँ बाप के संरक्षण में सुख से अपना जीवन बिताते थे। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी बचपन का ऐसा कौन सा दोस्त है जो आज भी आपके साथ है, आपके साथ उनकी दोस्ती अभी भी कायम है, और नहीं भी है तो क्या आप दोबारा उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हीं सारी बातों को आप हमारे साथ साझा कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। दोस्तों हमने बात की सेहत की। जी हाँ, अच्छी सेहत जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है क्या, सुरक्षित रहना। आज की महिलाएं पढ़ाई, नौकरी और दूसरे कई कामों के लिए अकेले सफर करती हैं। ऐसे में जो हमारा हैंडबैग या पर्स होता है ना, उसमें सिर्फ जरूरत का सामान ही नहीं रखा जाता, आपको पता है कई कई बार ना वो आपको बहुत सारी मुश्किलों से भी आप को निकाल सकता है, और ऐसे मुश्किल वक्त में वो आपका बहुत बड़ा सहारा भी बन सकता है। कैसे, अरे हम है ना आपको बता रहे हैं। देखिए क्या होता है कि हमारे पर्स में हम लोग हमेशा रोजमर्रा की ऐसी बहुत सी चीजें रखते हैं जो अक्सर ना, अगर ऐसी आप किसी स्थिति में पड़ जाए जहां से आपको निकलने के लिए किसी सहायता की जरूरत हो, कुछ सुरक्षा की किसी चीज की जरूरत हो, तो ये आपका जो पर्स है ना, इसके अंदर मौजूद बहुत सी चीजें आपके बहुत काम आ सकती हैं। अक्सर क्या होता है कि जब हम अकेले कैब में सफर करते हैं तो कैब में बैठते ही उसकी जानकारी और अपनी लाइव लोकेशन आप सबसे पहले ना अपने घर के किसी भी सदस्य को या अपने किसी दोस्त को या किसी ऐसे भरोसेमंद साथी को जरूर उसके साथ साझा कर दीजिए। और फिर ना अपना जो मोबाइल नंबर है उसमें आपके इमरजेंसी जो नंबर है उनको अपने एकदम टिप पर रखिए। सबसे पहले उनको अपने मोबाइल में उनका हमेशा मौजूद रहना जरूरी है, उन नंबर्स का। फिर जितने भी हमारे इमरजेंसी के जो नंबर्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, उनको भी अपने फोन में हमेशा सेव करके रखें। अब आपका जो पर्स है ना, आप उसको खोलकर देखिए, उसके अंदर चाबियों का गुच्छा तो हम महिलाओं के पास मिल ही जाता है। अब ये जो चाबियों का गुच्छा है ना, इसको कोशिश करें कि हमेशा अपने हाथ में रखें, अपने हाथ के आसपास रखें, ताकि पर्स में हाथ डालते ही वो आपके हाथ में आ जाए। और ये एक ऐसी चीज है जो मुश्किल वक्त में आपके हाथ में आ जाए ना, तो आप इसकी मुट्ठी बनाकर अपने बचाव के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर पेपर स्प्रे, जी हाँ पेपर स्प्रे, जिसमें मिर्च का स्प्रे होता है, वो भी आपके पास में होना, आपके पर्स में अगर है तो आपके लिए बहुत सुरक्षित एक बचाव का साधन हो सकता है, और जरूरत पड़ने पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक और चीज है, परफ्यूम या डिओड्रेंट तो हम सभी के पास में होता ही है। ये भी ना, अगर आपके पास में पेपर स्प्रे नहीं है तो परफ्यूम और डिओड्रेंट ये भी आपके लिए उसी के जैसा ही काम आ सकता है, बिल्कुल। और इसके अलावा देखिए, पेन तो हम सभी के पास होता है, फिर औरतें हमेशा नेल फाइलर भी अपने पास में रखती हैं, या फिर कंघी भी होती है हमारे पर्स में तो जरूर होती है। ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो किसी भी आपात स्थिति में हमारे लिए मददगार साबित हो सकती हैं। ये रोजमर्रा की चीजें हमेशा अपने पास अगर पर्स में नहीं भी रखती है ना, तो रखना शुरू कर दीजिए। फिर इसके बाद में एक चीज और है, वो है सेफ्टी पिन या हेयर पिन, ये भी हमारे पास मौजूद होती है, और आपको बताने की जरूरत नहीं है, किसी भी आपात स्थिति में आप इसका इस्तेमाल बकायदा अपनी सुरक्षा के लिए कर सकती हैं। फिर पानी की बोतल, मौसम कैसा भी हो एक पानी की बोतल हम लोग हमेशा अपने पास रखते हैं, उसे भी अपने साथ रखिए, भले ही वो स्टील की ना हो, अगर वो प्लास्टिक की भी है या किसी और मेटल की भी है तो वो बिल्कुल वही काम करेगी जो हमें चाहिए। और मोबाइल फोन,

मोबाइल फोन आजकल हमारे हाथ में हमेशा रहती हैं, उनको भी हमेशा अपने साथ में रखिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ड्राइवर बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है, या बिना वजह आपसे ज्यादा बात करने की कोशिश कर रहा है, या जो आपका तय रास्ता है उसको बदल रहा है, तो चुप ना रहें। किसी भी को भी, अपने किसी भी परिचित या अपने किसी भी घर के सदस्य को फोन करें, और किसी भी भीड़ भरी वाली जगह पर गाड़ी रुकवाएं और वहां से उतर जाएं। डरना नहीं है, लेकिन लापरवाह भी नहीं होना है। थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी तैयारी और सही समय पर लिया गया फैसला कई बार बड़ी मुसीबत को टाल सकता है, और इन आते जाते खूबसूरत रास्तों में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी हो सकती हैं। तो अपने मन को और अपने दिमाग को हमेशा शांत रख करके बाहर निकलिए, और अपने हाँ पर्स को इन सभी चीजों से हमेशा लबरेज रखिए।

फिल्म अनुरोध में आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में ये गीत। दोस्तों, सुरक्षित रहना जरूरी है, लेकिन अपने शरीर और मन का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर रोज थोड़ा सा समय अपने लिए निकाला जाए तो योग उसकी एक अच्छी शुरुआत हो सकता है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने एक नई पहल की है, जिससे योग को लोगों के घर और मोहल्ले के और करीब लाने की कोशिश की जा रही है। योग को

महिला की जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग पार्क पोर्टल शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य देश भर की मौजूदा पार्कों को ऐसे सामुदायिक स्थानों के रूप में विकसित करना है जहां लोग ना नियमित रूप से योग, ध्यान और दूसरी स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में भाग ले सकें। दोस्तों, इन योग पार्कों में ना योग अभ्यास के लिए विशेष स्थान, ध्यान के लिए शांत वातावरण और सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इस पहल में ना नगर निकायों, ग्राम पंचायतों, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, योग संस्थानों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी रहेगी और कॉरपोरेट कंपनियां भी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR के तहत योग पार्क विकसित करने में सहयोग कर सकेंगी। अगर आपकी संस्था या आपके क्षेत्र में कोई ऐसा पार्क है जो योग पार्क के रूप में विकसित किया जाना चाहता है या उसे किया जा सकता है, तो इसके लिए आप योग पार्क पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं और पोर्टल पर जो इसके दिशा निर्देश है ना, उसको जरूरी जो भी जानकारी है और जो दिशा निर्देश हैं उनको आप इस पोर्टल में जाकर के पता कर सकते हैं। और आज की आप जानते ही हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास अपने लिए समय ही नहीं है। शायद ऐसी पहल उस दूरी को थोड़ा कम कर दे। हो सकता है कल आपके घर के पास का वही पार्क जहां आज बच्चे खेलते हैं और बुजुर्ग टहलते हैं, वहीं सुबह योग की कक्षाएं भी लगने लगे। धीरे धीरे ये पार्क पूरे मोहल्ले की सेहत, अपनापन और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाएंगे, है ना, अगर हमने उसे योग पार्क पोर्टल में उनको अगर बदल दिया तो। और अगर आप इस पहल के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं ना, तो आप आयुष मंत्रालय की वेबसाइट जो है yoga.ayush.gov.in इस पर जाकर योग पार्क पोर्टल देख सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि जब तन स्वस्थ होता है तो मन भी झूमता है, गाता है और मुस्कुराता है। किस तरह? इस तरह।

ये झूमता गाता गीत आप सुन रहे थे फिल्म पराया धन से, और इसमें जो गाने की आवाज थी जिनकी, वो थी किशोर कुमार और आशा भोसले। देखिए हमारे साथ जुड़े हैं, जी हाँ, कौन है ये? ये है रेखा देवी चौधरी। ये भी हरियाणा से हमें लिख रही हैं कि बचपन की सहेलियों से आज भी बात होती है, बच्चों को खेलता हुआ देखकर अपना बचपन याद आ जाता है। मेरे ससुर राजू अग्रवाल रेडियो सुनते हैं, मैं भी काम करते हुए आपका प्रोग्राम सुनती हूँ। देखिए यही तो खूबसूरती है बता रेडियो की, कि आप ना कुछ भी कर रहे हो आप साथ साथ में रेडियो भी सुन सकते हैं। यह आपको किसी भी काम से रोकता नहीं है, ना आपके हाथ बांधता है। आप पूरे समय अपना मूड बहुत अच्छा रख सकते हैं, खूबसूरत गाने सुन सकते हैं। कहाँ? FM गोल्ड 7.1 MHz पर हमारे साथ दिन दिन भर। और आप अच्छे गाने सुनिए, अच्छा स्वस्थ अपना अपना मन हमेशा स्वस्थ रखिए, स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रखिए, और हमारे साथ लगातार बने रहिए। फिर हमारे साथ एक और है, जी हाँ, हमारे एक और दोस्त हैं, वो हैं सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से लिख रहे हैं। सोनाली जी सादर प्रणाम, आपका भी हमारा प्रणाम। आप हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, इन्हें जानकारियां और बातें अच्छी लग रही हैं। फिर ये लिखते हैं कि स्कूल कॉलेज का कोई साथी मिलता है तो बचपन की बहुत मीठी यादें ताजा हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं, और यही तो खुशी होती है और यही तो एक सुख है दोस्तों के साथ रहने का और उनके साथ में बने रह करके अपने मन को हमेशा हल्का करने का। तो देखिए हमने बात की योग की, हमने बात की स्वास्थ्य की। अब रोज थोड़ा सा योग शरीर और मन दोनों को तरोताजा कर देता है, और जब बात मन को सुकून देने की हो तो खुशबू का जिक्र अपने आप आ जाता है। आइए आज आपको ले चलते हैं भारत के एक ऐसे शहर में जिसकी पहचान ही उसकी महक है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज है ना, ये सदियों से इत्र बनाने की अपनी अनूठी परंपरा के लिए जाना जाता है, और यही वजह है कि इसे भारत की इत्र नगरी कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ इत्र बनाने की कला लगभग 2000 वर्ष पुरानी है, और आज भी कई परिवार पीढ़ियों से इस विरासत को संजोए हुए हैं। कन्नौज की ना जो सबसे बड़ी पहचान है वो है मिट्टी का इत्र। पहली बारिश के बाद भीगी धरती से उठने वाली सौंधी महक को यहाँ के कारीगर पारंपरिक देग भाप का विधि से इत्र में बदल देते हैं। इसके अलावा गुलाब, चमेली, केवड़ा, मोगरा और खस जैसे फूलों से भी प्राकृतिक इत्र तैयार किए जाते हैं। कन्नौज के जो इत्र है ना, उसकी जो विशिष्टता और विशेषता है वो पारंपरिक कला के लिए GI टैग भी इसको मिल चुका है। यही वजह है कि यहाँ की खुशबू देशी नहीं विदेशों तक अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। कहते हैं ना दोस्तों, कुछ शहर अपनी इमारतों से पहचाने जाते हैं, कुछ अपने इतिहास से, लेकिन कन्नौज ऐसा शहर है जिसकी पहचान उसकी खुशबू है, और ये खुशबू सिर्फ इत्र की नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत की भी है। कुछ खुशबुएं सिर्फ महकती नहीं है, याद भी रह जाती हैं, है ना? तो आइए सुनते हैं इन्हीं खुशबुओं और फूलों से महकता हुआ ये बहुत प्यारा सा गीत।

फिल्म रजनीगंधा में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। दोस्तों, हम लोग हमेशा बचत के कोई ना कोई नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। आजकल बचत के तरीके भी बदल रहे हैं। अब सोना खरीदने के लिए हमेशा ज्वेलरी की दुकान तक जाना जरूरी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ डिजिटल गोल्ड के बारे में, और इसे खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी हम आपको आज बताएंगे। डिजिटल गोल्ड सोना खरीदने का एक ऑनलाइन तरीका है। इसमें आप मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से अपनी सुविधा और बजट के अनुसार बहुत छोटी राशि से भी सोना खरीद सकते हैं। आपके नाम पर खरीदा गया सोना सुरक्षित वॉल्ट में रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर आप उसे बेच सकते हैं या तय शर्तों के अनुसार सिक्के या बार के रूप में मंगवा भी सकते हैं। हालांकि डिजिटल गोल्ड खरीदने से पहले ना कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप हमेशा विश्वसनीय और प्रतिष्ठित मंच का ही चुनाव करें, और ये भी देख लें कि सोना 24 कैरेट और 99.5% यानी 99.5% या उससे अधिक शुद्धता का ही हो। और हमेशा ध्यान रखें कि आप जहां से भी ले रहे हो वो ऑथेंटिकेट जगह हो और प्रामाणिक जगह से ही चीजें लें, और भंडारण शुल्क, डिलीवरी शुल्क और अन्य नियमों की जानकारी पहले ही पढ़ लें। ये भी ध्यान रखें कि डिजिटल गोल्ड भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित निवेश उत्पाद नहीं है। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें और अपनी जरूरत और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखें। बचत का

कोई भी तरीका चुने, लेकिन सबसे जरूरी बात है समझदारी से निर्णय लेना, है ना। जानकारी जितनी भी सही होगी आपका फैसला भी उतना ही बेहतर होगा। और सोना चाहे तिजोरी में रखा हो या डिजिटल रूप में, भारतीय घरों में उसकी चमक और अपनापन हमेशा खास रहा है।

दोस्तों आप सुन रही हैं फिल्म दोस्त दो रास्ते। फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत और इस गीत के साथ ही मैं यानी आपके रेडियो हम सफर आपसे आज के इस कार्यक्रम घर आंगन से इजाजत चाहूंगी। दोबारा मिलने के वादे के साथ नमस्कार।

ஆங்கன் आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि VBGRAMJI अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बने।

बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीराम जी के अंतर्गत 327.40 रुपये प्रति

0: ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन और सिंचाई के विस्तार से सिंचाई आधारित कृषि के 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं। पहली जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेतों में जल दक्षता में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत, बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has said Digital India initiative has redefined governance, empowered citizens and accelerated all-round development. Marking the 11 years of the initiative, Mr. Modi said that Digital India has touched every aspect of life. He underscored that seamless digital payments and direct benefit transfers are reaching beneficiaries with transparency. Mr. Modi said that technology has become a powerful instrument for furthering ease of living. Home Minister Amit Shah has said that the government has transformed India into a digital nation by expanding digital connectivity, strengthening digital governance, and improving access to public services. Marking 11 years of the Digital India initiative, Mr. Shah said the country has witnessed significant progress in internet connectivity, digital infrastructure and technology-driven governance. In a social media post, he said that over 103 crore people are now connected to the internet, while more than 2,20,000 villages have been linked through BharatNet. Revised wage rates under the Viksit Bharat Ji Ramji Act 2025 have become effective from today. According to the notification issued by the Rural Development Ministry, wage rates have been enhanced across all states and union territories. The ministry said for the first time an interim base wage rate of 300 rupees per day has been introduced, ensuring that no notified wage under the program falls below this level. The national average wage has risen from 298.8 rupees per day under MG Narega to 327.4 rupees per day under Viksit Bharat Ji Ram Ji. 21 states and administrative units which previously had wages below 300 rupees have now been brought up to the new benchmark. Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan described the revision as a historic step towards building a Viksit

0: Bharat through prosperous villages. In Uttar Pradesh, five people, including two minor girls, were killed after a sleeper bus collided with a car on the Agra-Lucknow expressway in the wee hours today. According to the officials, the sleeper bus was travelling from Haryana to Bihar, while the car was heading from Agra towards Lucknow when the speeding bus hit the car from behind. After the collision, the bus fell off the expressway and overturned. The impact was so severe that the car was completely mangled and dragged for nearly 20 feet on the expressway. With the help of locals, injured people were rescued and rushed to the community health center Bangarmau. Those with serious injuries were referred to the district hospital. Noted film and theatre personality Vijaya Mehta passed away at a Mumbai residence last night at the age of 92. She was one of the pioneers of experimental Marathi theatre. Fondly known as Bai, Vijaya Mehta introduced a new theatrical language, fresh perspectives and a globally informed approach to Marathi stagecraft through the theatre group Rangayan. Her landmark productions include Barrister, Sakharam Binder, Hamida Baichi Koti, among others. As a teacher and mentor, she trained several generations of actors and theatre practitioners. Vijaya Mehta was honoured with the Sangeet Natak Academy Award in 1975. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the passing of the veteran theatre director and remembered her creativity and commitment to artistic excellence. Prime Minister Narendra Modi today hailed the efforts of doctors and medical professionals who are working in Venezuela as a part of Operation Amistad. In a social media post, he said that in such a challenging time, the efforts to serve those in need are shining examples of how medical professionals rise to the occasion every time the society faces a challenge. India launched Operation Amistad in response to devastating earthquakes in Venezuela that caused extensive loss of life, injuries and widespread destruction. Operation Amistad is a humanitarian assistance and disaster relief mission in a gesture of solidarity with the people of Venezuela. On the second day of the higher level assessment tour, Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju, accompanied by Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu, conducted an aerial survey of flood-hit areas in the state today. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है दोपहर के 1:10 और 15 सेकंड और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक ही फिल्म से। प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह!
3: अनजान ऐप से बचें।
4: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: जी हाँ दोस्तों, आज हम टाइम मशीन में बैठकर पीछे चलेंगे पूरे 32 साल। जी हाँ, 32 साल पीछे, और वो साल था 1994, जब थिएटर के बाहर लंबी कतारें लगी थी, ब्लैक में टिकट बिक रही थी और हवाओं में सिर्फ एक ही धुन गूंज रही थी, चेहरा क्या देखते हो। आप समझ गए ना हम किस दौर की बात कर रहे हैं और किस फिल्म की बात कर रहे हैं। एक ऐसी फिल्म की जो ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, एक ऐसी फिल्म जिसने बड़े बड़े खान्स के दौर में बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल दिखाया कि लोग देखते ही रह गए। तो आज की महफिल सजी है साल 1994 की उस फिल्म के नाम जिसने नए कलाकारों के साथ भी संगीत प्रेमियों के दिलों में खास जगह बनाई। तो चलिए इसी फिल्म के बारे में आज आपसे हम बात करेंगे और इसी फिल्म के गीत भी आज हम आपको सुनवाएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और अपने दिल की बात कहने का जो तरीका है, जो हाल बताने का रास्ता है, माध्यम है, वो तो आप जानते ही हैं, मेल। और इस फिल्म से जुड़ी जो बातें हैं वो भी आप इसी के जरिए हम तक पहुंचाएंगे। मेल भेजने का मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। और इन सब बातों के बीच में मैं ये बताना तो भूल ही गई कि आज आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। इस गीत को सुनिए और उसके बाद हमेशा की

फिलहाल यहाँ हमारा दिल टूटा नहीं है, दिल तो हमारा जुड़ने वाला है उस फिल्म के साथ जिसने तहलका मचा दिया था। और जब आपके गीत, जब आप तक गीत पहुँचेंगे और आपका जो संदेश है, जो जवाब हम तक पहुँचेंगे, तो फिर तो दिल गदगद होगा।

सोच में आपको तो पढ़ना ही नहीं है, और हम जानते हैं कि आप सोच में पढ़े भी नहीं हैं, क्योंकि आपके जिस तरीके से जवाब पहुंच रहे हैं, आपने झट से इस फिल्म को पहचान लिया जो आज हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो सबसे पहले खोलते हैं इस फिल्म की कुंडली। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था शाहरुख सुल्तान ने, और पर्दे पर नजर आए थे दो बिल्कुल नए चेहरे, अयूब खान और संयुक्ता सिंह। कहानी में देशभक्ति का जज्बा, पुलिस फोर्स का एक्शन और एक ऐसी लव स्टोरी थी जिसने उस दौर के युवाओं के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी थी। लेकिन जानते हैं आप कि जो फिल्म का संगीत था वो किसने दिया था? मशहूर जोड़ी नदीम श्रवण ने, जबकि गीतों को शब्दों से सजाया था समीर ने, मदन पाल और अन्य गीतकारों ने। बहुत ही दिलचस्प पर्दे के पीछे की कहानी भी है इस फिल्म से जुड़ी हुई, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें शॉर्ट में इस फिल्म की कहानी क्या थी। फिल्म का नायक विजय एक ईमानदार सैन्य कैडेट है, उसे सभी से प्यार हो जाता है, लेकिन सभी की पुरानी और दर्द भरी यादों के कारण वो कुछ रिश्ते उसके खिलाफ भी हो जाते हैं। और दूसरी ओर एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी भी है और उसका एक बेटा है, तो ये यहाँ पर कुछ मुश्किलें खड़ी होती हैं। लेकिन प्रेम, कर्तव्य और ईमानदारी की इस कहानी में रोमांस के साथ साथ देशभक्ति की भावना भी देखने को मिलती है। अब फुल डिटेल में अगर आपको कहानी जाननी है तो उसके लिए देखनी पड़ेगी आपको फिल्म सलामी। और उस फिल्म में, हालांकि मैं जानती हूँ कि इस फिल्म को आपने जरूर देखा होगा, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जिसको शायद उस दौर के हम जैसे जो साथी हैं उन्होंने नहीं छोड़ा होगा। इतनी सुपर डुपर हिट फिल्म रही है और एक नई जोड़ी आई थी, उस जोड़ी ने ऐसा कमाल किया जिसकी उम्मीद शायद फिल्म के जो निर्देशक हैं उनको भी नहीं थी। बहुत ही खूबसूरत ये जोड़ी रही थी। हाँ, वो बात अलग है कि इस जोड़ी ने आगे किसी और फिल्म में काम नहीं किया, लेकिन अगर इस फिल्म में उन्होंने काम किया, इतनी खूबसूरत फिल्म रही है, तो इसी जोड़ी पर पिक्चराइज इस फिल्म का एक और गीत आप तक पहुंचाते हैं।

क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के चॉकलेटी हीरो अयूब खान का बॉलीवुड के द लेजेंड से क्या रिश्ता है? आपको बताते हैं, ये दिलीप कुमार साहब यानी कि यूसुफ खान के सगे भतीजे हैं। इस फिल्म से अयूब रातों रात स्टार बन गए थे। लड़कियों के खत उनके घर खून से लिखे हुए आने लगे थे। फिल्म की खूबसूरत सी एक्ट्रेस संयुक्ता सिंह सलामी जैसी मेगा हिट फिल्म देने के बाद हर किसी को लगा था कि वो बॉलीवुड पर राज करेंगी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इस बम्पर कामयाबी के बाद भी उन्होंने बहुत जल्द चकाचौंध की इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। और अब आपको भी इंतजार होगा इस फिल्म का उस गीत, सुपर डुपर जो गीत है उसका, जिससे कुमार सानू और आशा भोसले जी की आवाज ने रातों रात सबके दिलों पर राज करने वाले गीत बना दिया था। जी हाँ, 90 के दशक के सबसे लोकप्रिय प्रेम गीतों में इस गीत को गिना जाता है। फिल्म के रिलीज के समय ये गीत रेडियो, कैसेट्स और संगीत प्रेमियों की पहली पसंद बन गया था। और ये आपको बता दें कि अयूब खान के करियर की वैसे तो ये फिल्म सबसे चर्चित फिल्म मानी जाती है, और साथ ही साथ इस गीत ने भी उनको एक अलग ही पहचान दिखाई थी। आज जब मल्टीप्लेक्स है, इसका दौर है, तो शायद आज के बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि 90 के दशक में जब सिंगल स्क्रीन थिएटर्स होते थे, तब अगर कोई फिल्म रिलीज हो और वो एक सा कमाल कर दे तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और जब ये गीत बजता था, जब सिनेमा हॉल के अंधेरे में कुमार सानू और आशा जी की आवाज़ में ये गीत लोग सुनते थे, तो अपनी सीटों पर खड़े होकर नाचने लगते थे। थिएटर्स के मालिक ने बताया था उस टाइम कि हर शो के बाद स्क्रीन के पास से सिक्कों की बोरियां भरी जाती थी, लोग स्क्रीन पर पैसों की बारिश कर देते थे। ये दौर था वो, तो सुनते हैं हम भी इस खूबसूरत से गीत को।

चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखना। जी हाँ, फिल्म का संगीत 1994 के सबसे अधिक बिकने वाले एल्बमों में से शामिल था, और खासकर इस फिल्म का ये वाला गीत और दूसरा मिले तुमसे बिछड़ के, दोनों ने ही अपार लोकप्रियता हासिल की थी। ये फिल्म, जानते हैं इसका शुरुआती नाम क्या था? गुलफाम। जी हाँ, शुरुआत में इस फिल्म का नाम गुलफाम रखने की योजना थी, जिसे बाद में बदलकर सलामी कर दिया गया। इस फिल्म ने वो तहलका युवाओं के बीच में मचाया था कि वो इस तरीके की जो जोड़ी थी, लोगों ने, जो युवा जो लोग थे, उन्होंने इस जोड़ी को हाथों हाथ लिया और इतना प्यार दिया कि शायद इतना प्यार उस वक्त, जबकि एक नए चेहरे के लिए बहुत कमाल की बात होती थी कि अपने आप को वो साबित करे, जब उसके सामने एक ऐसे ऐसे धुरंधर अभिनेता हैं और वो एक नया चेहरा आकर अपनी एक खास जगह बनाए श्रोताओं के बीच।

दशकों के बीच में वो सब इस जोड़ी ने करके दिखाया था। तो अब आपको सुनवाते हैं एक और खूबसूरत सा गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में।

आपके संदेश भी पहुंच गए हैं। पहाड़ा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत जी जुड़े हुए हैं। अगला संदेश सैयद मसरूर शाइना हसन जी का आया है। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवानगन, कौशल्या, डिंपल हेमलता जी हैं। पलारी से नितेश जी का एक और संदेश हमारे पास है। ज्योति मक्कर, संदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, माफ कीजिएगा, ये पिंगा वाला चौक जालंधर से।

बीरंगाव गुजरात से अजीत भापसर, प्रमिला भापसर जी हमारे साथ हमेशा की तरह ढेर सारी जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संदीप मक्कर जी, ज्योति मक्कर जी का एक और संदेश है। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से हैं। शाली मार्ग से अशोक कुमार सहगल जी हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख रहीम मुन्ना जी हमारे साथ हैं। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुलरकर, रत्ना ओम प्रकाश हमारे साथ हैं। सुनील पाठक जी हमारे साथ, कमल पाठक के साथ अनारकली बाजार जगराव पंजाब से जुड़े हुए हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जी हमारे साथ हैं। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद गुलाम साबिर महराज जी हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता हमारे साथ हैं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, समडी नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा अदिति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश सुरेश राठौड़, गांधीनगर गुजरात से इनका पहुंचा है। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से जुड़ चुके हैं। अगला ये जो है मैसेज वो डीवी राणा नेहरू विहार दिल्ली से हमें भेजते हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवरगन जी का एक और संदेश हम तक पहुंचा है। जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त केरव ज्योति रानी गुरमत जी हैं। बटिंगखेड़ा पंजाब से मिंची टॉमस, पिंकी लवली आरती हैं। आनंद पर्वत दिल्ली से लखपत राज, वेद प्रकाश चौहान, सूबेदार अमर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवशंकर तामुरी, अजय देव, तुषार, बेबी डॉली पूजा, कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंजी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से हैं। श्रीनगर कश्मीर से साहिल डार उर्फी जी हमारे साथ हैं। नागरकोरा जिला राजनांदगांव से बबलू जामुन देवी पूजा दुष्यंत जी हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैद अब्बासी निगत, परवीन श्रीनिवास, सरफराज फरदीन, अरदान और परिवार के सभी सदस्य हैं। भोपाल का राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, पूजा परिहार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

संबलपुर कांकेर से फागुन राम यादव, ज्योति ओजस्वी जी हैं, बागपत से संजय डिंगिया, नमन अपार डिंगिया जी हमारे साथ हैं, मयूरी परिसर भोपाल से श्रवण सिंह गिन्नारे जी हमारे साथ हैं, लिखते हैं कि ये मैंने फिल्म को 2 बार देखा था। सुरेश जागव, अनिता सोनल प्रसाद जी नेहरू चौक पैठण से जुड़े हैं। अगला संदेश हमारे पास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी का आया है। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुलरकर रतन माला जी हमारे साथ हैं और सुनीता यादव सुमन जी दुर्ग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रनगर भवरपुर से राधेश्याम देवानगन चंपा जी हमारे साथ हैं। ये संदेश हमारे पास पहुंचा है नोहर राजस्थान से नरेंद्र मनोज और हिमांशु सुधार जी का। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम प्रमीला जी हमारे साथ हैं। गांव फरासी से राजकुमार डूंडी जी हैं। बीरन गांव से अजीत भापसर जी जुड़े हैं। इंद्रनगर भवरपुर से राधेश्याम जी का संदेश है। पहाड़गंज मुल्तानी ढाना से अनिल मोहन उषा मोहन टिल्लू नायक जी हमारे साथ हैं। भोईनापारा जिला बालोद से देवनारायण साहू योगिता जी हमारे साथ हैं। रामशरण विश्वकर्मा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं और यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे सफर में हमारे साथ जुड़े और हमारे हम सफर बने।

चेदमेरी कुरासिया कालरी सिंद्रवान सिंह अनुभव ऋषभ राम सहोदर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अगला संदेश हमारे पास पहुंचा है भोपाल का राजस्थान से धर्मेन छिपा जी का। दोस्तों सलामी शायद बॉक्स ऑफिस पर उस दौर की सबसे बड़ी हिट फिल्म ना रही हो लेकिन इसका संगीत समय की कसौटी पर आज भी खरा उतरता है। 90 के दशक की रोमांटिक धुनों की बात हो और नदीम श्रवण का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। उम्मीद करते हैं कि आज की फिल्म आपको जरूर पसंद आई होगी। अगली मुलाकात में एक नई फिल्म के साथ फिर हाजिर होंगी। 3 बजे आप कहीं मत जाइए, जी हाँ घड़ी में और डायरी में लिख लीजिए 3 बजे आपसे मेरी मुलाकात फिर होगी और प्रोग्राम होगा मैटिनी मेलोडीज। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया मुहिम के 11 साल पूरे होने मौके किया कि डिजिटल इंडिया मुहिम ने सुशासन में एक नवी दिशा दी है। विकसित भारत रोजगार से आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण कानून आज तो लागू हो गया है। देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कानून के लागू होने इतिहासक प्राप्ति दसी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कहना है कि नौजवानों की ऊर्जा, हुनर से वचनबद्धता एक समावेशी खुशहाल राष्ट्र के निर्माण में फैसलाकुन भूमिका निभाएंगे। फौज मुखी जनरल धीरज सेठ ने कहा कि बदलते सुरक्षा माहौल को प्रभावशाली ढंग से हल करने फौज के आधुनिकीकरण को तेज किया जाएगा। पासपोर्ट अर्जी फीस में वाधा आज तो लागू हो गया है। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया मुहिम ने सुशासन में एक नवी दिशा दिती है और देश के समुचे विकास को तेज किया है। इसने नागरिकों को मजबूत भी बनाया है। डिजिटल इंडिया मुहिम के 11 साल पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का प्रभाव लोगों के जीवन के हर पहलू में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान से सीधे लाभ तबादले राही सरकारी सहायता पारदर्शिता नाल सीधे लाभपात्रियों तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने देश के हर कोने विच नवीनता ल्यांदी है। श्री मोदी ने कहा कि इस पहल ने शिक्षा, सेहत, खेतीबाड़ी, व्यापार ते सरकारी सेवावां विच भी सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भारत AI, सेमीकंडक्टर ते क्वांटम कंप्यूटिंग वर्गियां नवीं तकनालोजियां दे खेतर विच तेजी नाल तरक्की कर रहा है। विकसित भारत रोजगार से आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण कानून आज तो लागू हो गया है। देहाती विकास मंत्रालय ने कहा कि VBG रामजी कानून तहत हरेक माली साल विच 125 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाएगी। यह देहाती भारत को मजबूत बनाएगा। देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी

0: दी है। पेश एक रिपोर्ट।
1: भारत तेजी से डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे डीपीआई के शोबे में एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभर रहा है। इस कामयाबी की बुनियाद काबिले तौसी और शहरियों पर मरकूज डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स हैं। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल बुनियादी ढांचे के निजाम में ताउन के लिए 24 मुल्कों के साथ मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल शनाख्त, डिजिटल अदायगी, डेटा के तबादले और सरकारी खदमात की फराहमी जैसे शोबे शामिल हैं। अदायगियों का यकसा इंटरफेस यूपीआई अब 8 से ज्यादा मुल्कों में काम कर रहा है, जिनमें मुत्तहदा अरब अमारात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशियस और श्रीलंका शामिल हैं। इससे आलमी सतह पर मालियाती टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत की मौजूदगी मजीद मुस्तहकम हुई है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे प्लेटफॉर्म्स आलमी सतह पर डिजिटल हुक्मरानी के नए मॉडल की तश्कील में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 के तहत नजरसानी शुदा योमिया उजरत आज से नाफिज हो गई है। देही तरक्यात की वजारत के मुताबिक तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में उजरतों में इजाफा किया गया है। वजारत ने कहा कि पहली बार 300 रुपये योमिया अबूरी बुनियादी उजरत मुकर्र की गई है, ताकि इस स्कीम के तहत किसी भी रियासत में मजदूरी इस हद से कम न हो। एम जी नरेगा के तहत उजरत की कौमी औसत योमिया 298 रुपये 80 पैसे थी, जो कि विकसित भारत जी राम जी एक्ट के तहत 327 रुपये 40 पैसे हो गई है। इसके अलावा 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में जहां पहले योमिया उजरत 300 रुपये से कम थी, अब उसे भी नए मेयार तक बढ़ा दिया गया है। फौजी अमले के नए सरबराह जनरल धीरज सेठ ने सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल के चैलेंजों से निपटने के लिए फौज की जदीदकारी की जरूरत पर जोर दिया है। फौजी अमले के 31वें सरबराह की जिम्मेदारी संभालने के बाद आज मीडिया से खिताब करते हुए जनरल सेठ ने टेक्नोलॉजी से लैस और मुस्तकबिल के लिए तैयार एक ऐसी भारतीय फौज के मकसद को उजागर किया जो हर मामले में बाख्तियार हो और हर सूरत हाल में कार्रवाई करने की सलाहियत रखती हो।
2: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: उन्होंने कहा कि फौज सरहदों और उभरते हुए खतरात के सिलसिले में मुसलसल चौकसी बरकरार रखेगी और कौमी सलामती को लाहक किसी भी चैलेंज से मुअसर तौर पर निमटने के लिए कार्रवाई की आला सतही तैयारी रखेगी। जनरल सेठ ने कहा कि उनकी तवज्जो नजरियाती और तकनीकी दोनों हल पर रहेगी।
2: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: पासपोर्ट से मुतालिक तरमीमी जाबतों 2026 के तहत नए पासपोर्ट की दरखास्त की फीस में आज से इजाफा कर दिया गया है। फीस के नजरसानी शुदा निजाम के तहत 36 सफहात के नए पासपोर्ट या पासपोर्ट दोबारा हासिल करने के लिए अब 2,500 रुपये अदा करने होंगे। 60 सफहात के नए आम पासपोर्ट या उसे दोबारा हासिल करने के लिए 3,500 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, जबकि तत्काल स्कीम के तहत 6,000 रुपये देने होंगे। 36 सफात के पासपोर्ट के खो जाने या उसे नुकसान पहुंचने की सूरत में उसकी जगह आम पासपोर्ट फिर से हासिल करने के लिए फीस 5,000 रुपये होगी। 60 सफात के पासपोर्ट के खो जाने या उसकी जगह आम पासपोर्ट फिर से हासिल करने के लिए 6,000 रुपये फीस तय की गई है। पानी के पायदार बंदोबस्त और आबपाशी में काबिल जिक्र तौसी के जरिए जरिए तब्दीली में पेशरफ्त के सिलसिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 से ज्यादा साल मुकम्मल हो गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आगाज 1 जुलाई 2015 को हुआ था और इस स्कीम के तहत मुल्क भर में आबपाशी को मुस्तहकम, पानी के मुअसर इस्तेमाल में बेहतरी और पानी की बचत को फरोग देने को यकीनी बनाया गया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजरा शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू ने सैलाब से मुतासरा इलाकों के मुआयने के दूसरे रोज वजीर आला पेमा खांडू के हमरा आज मुतासरा इलाकों का फजाई सर्वे किया। टीम ने पहले मशरकी सियांग जिले के शहर पासीघाट का दौरा किया, जो सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में शामिल है। इसके बाद बोइंग गांव पहुंचकर जमीनी सतह पर नुकसान का जायजा लिया। अचानक आने वाले सैलाब और

0: मिट्टी के तोदे खिसकने के बायस गांव में 20 से ज्यादा मकानात तबाह हो गए, जबकि धान के खेत, खड़ी फसलें और मवेशी भी शदीद तौर पर मुतासिर हुए, जिससे कई खानदान मुश्किलात का शिकार हैं। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने बेघर होने वाले मुतासिरीन से मुलाकात की और उनकी मुश्किलात मालूम की। अब तक रियासत में 4 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए हैं। 90,499 अफराद मुतासिर हैं। तकरीबन तमाम 28 जिले इस आफत से मुतासिर हैं। दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 आज से नाफिज हो गई है। इस नई पॉलिसी के तहत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स नहीं होगा। इस नई पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करते हुए नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर 1 लाख रुपए की रियायत भी दी जाएगी और ये पॉलिसी इस बात को भी लाजमी बनाती है कि अप्रैल 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया गाड़ियां ही रजिस्टर होंगी। 4 साल में मरहलावार तरीके से नाफिज होने वाले इस अहम तरीक़ेकार पर 15,000 करोड़ रुपए के माली अखराजात होंगे। अशिया और खिदमात टैक्स GST की वसूलियाबी गुज़श्ता महीने बढ़कर 1,94,812 करोड़ रुपए हो गई, जो जून 2025 में 1,71,105 करोड़ रुपए से साल बसाल 13.9% का इजाफा है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि आइंदा 2 रोज के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की जानेब बढ़ने का इम्कान है। फीफा आलमी कप में आज सुबह मैक्सिको सिटी स्टेडियम में मैक्सिको ने नॉकआउट मुकाबले में इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया और प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये 40 बरस में आलमी कप में नॉकआउट मरहले में मैक्सिको की पहली जीत है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि पिछले 11 बरस के दौरान डिजिटल इंडिया ने गरीबों और महरूम तबकात को बाख्तियार बनाया है और लाखों अफराद के रहन सहन में आसानी पैदा की है। विकसित भारत जी राम जी एक्ट के तहत उजरतों में इजाफा आज से लागू हो रहा है। फौजी अमले के सरबराह जनरल धीरज सेठ ने फौज के 31वें सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्होंने बदलती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल के चैलेंजों से निपटने के लिए फौज की जदीदकारी पर जोर दिया। मरकजी वजरा शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में सैलाब से मुतासरा इलाकों का फजाई मुआयना किया और फीफा आलमी कप में मैक्सिको इक्वाडोर को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says 11 years of Digital India empowered the poor and the underprivileged, making life easier for millions. Increased wages under Viksit Bharat Ji Ramji Act become effective from today. Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju undertake aerial survey of flooded areas of Arunachal Pradesh. Newly appointed Army Chief General Dhiraj Seth stresses on modernization of Army to tackle challenges of evolving security environment. Afghanistan attacks ISIS targets in Pakistan. Monsoon likely to advance to Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab in the next 2 days. And in FIFA World Cup, Mexico defeat Ecuador 2-0 to enter round of 16. Prime Minister Narendra Modi has said Digital India initiative has redefined governance, empowered citizens and accelerated all-round development. The Prime Minister said 11 years of Digital India empowered the poor and the underprivileged and made life easier for millions. He said Digital India has touched every aspect of life. He underscored the seamless digital payments and direct benefit transfers are reaching beneficiaries with transparency. Mr. Modi said that technology has become a powerful instrument for furthering ease of living. The ambitious Digital India program of the government was launched this day in 2015. Since then, it has shaped how citizens connect, learn, transact and access public services across the country. India has built one of the world's largest digital public infrastructure ecosystems. We have more from a correspondent.
2: India is emerging as a global leader in digital public infrastructure DPI driven by scalable and citizen-centric digital governance platforms. India has signed Memorandum of Understanding with 24 countries for cooperation on

0: I extend my sincere appreciation and heartfelt gratitude to the medical fraternity for its unwavering dedication, exemplary professionalism, and compassionate service to humanity. Doctors are the cornerstone of our healthcare system, tirelessly working to alleviate suffering, save lives, and uphold the highest standards of patient care. Your selfless commitment and resilience continue to inspire the nation and strengthen our collective pursuit.
1: In FIFA World Cup, Mexico defeated Ecuador 2-0 in the round of 32 clash at the Mexico City Stadium this morning to qualify for the round of 16. Raul Jimenez and Julian Q scored for Mexico. This marked Mexico's first World Cup knockout stage win in 40 years. Earlier, Kylian Mbappe further enhanced his World Cup legacy to lead France to a comfortable 3-0 win against Sweden in the round of 32. Mbappe struck twice to take his World Cup tally to 18 goals, now two clear of Miroslav Klose and only one behind Lionel Messi. Norway has also sailed to the round of 16, beating Ivory Coast 2-1 in Texas. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says 11 years of Digital India empowered the poor and the underprivileged, making life easier for millions. Increased wages under Viksit Bharat Ji Ramji Act become effective from today. Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju undertake aerial survey of flooded areas of Arunachal Pradesh. Newly appointed Army Chief General Dheeraj Seth stresses on modernization of army to tackle challenges of evolving security environment. Afghanistan attacks ISIS targets in Pakistan. Monsoon likely to advance to Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab in the next 2 days. And in FIFA World Cup, Mexico defeat Ecuador 2-0 to enter round of 16. And with that, we end the Midday News.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मॉनसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
3: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्ट

0: कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि बीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
1: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीनी स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
2: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
3: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते

0: खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो चार दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के

0: सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
1: India's engagement. भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयाँ और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियाँ भी उपलब्ध कराता रहा है।
2: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आईएसआईएस के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में आईएसआईएस और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स।
1: दरअसल पैंतीस आकाशवाणी दिल्ली कना नेशनल न्यूज सर्विस ही प्रोग्राम लांग ने उत्पिन मीडियम वेवी का अचैसा आकाशवाणी कारगिली कना सिरिनुत वक्सपो निमेतु सुत निजने फेचों सु कसा ता एनसीआरटी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम यन मैसेत उमंग

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
0: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
0: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
0: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
2: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
0: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ। श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए, हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
2: जी,
0: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
2: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है, तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
0: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है
2: जी।
0: तो विमलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
2: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
0: कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
2: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार, अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
0: तो ये बात है। शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं
2: जी।
0: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
2: जब कोई तारा फटता है और

0: दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं। इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
1: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
0: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
1: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते हैं। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए। इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
0: जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
1: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
0: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
1: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
0: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है।
1: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं, लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है।
0: जी,
1: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
0: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना न भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
1: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
1: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहाँ शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर है क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं

0: उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
1: यस मैम।
0: आह क्या बात है
2: मैम।
0: हाँ बेटी,
2: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
0: बिल्कुल कहा।
2: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
0: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
2: जी पहाड़ी।
3: अरे वाह। अच्छा लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
0: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
1: यस मैम।
0: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
1: अच्छा।
0: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
1: अच्छा।
0: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
1: अच्छा, मैंने भी देखा है।
3: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
0: बिल्कुल जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
5: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
0: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
1: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
3: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
4: जी मैम,
2: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
3: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
5: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
1: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
1: हाँ, जी मैम।
2: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
2: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
5: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है।

0: मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
1: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
5: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई, नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने जा रहे हो क्या?

0: नया घर बना रहे हो?
1: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बांगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
0: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
1: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
0: अच्छा, तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है, इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
1: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
0: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
1: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजदूरी भी अच्छी देते हैं।
0: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
1: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे है ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे हैं।
0: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
1: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
0: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं, अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
1: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
0: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ।
1: कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
2: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
1: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
2: अरे भाई, ये भी
1: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं, और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
2: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
1: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है बोलो।
2: मैं बोलो। अच्छा अच्छा, देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहां खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
1: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
3: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है, अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
1: अच्छा, और मुखिया जी क्या फाके करे, मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
4: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग चार दिनों तक चलती रही।
5: मुखिया जी, मुखिया जी!
6: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
5: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
6: ओ, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
5: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
6: तो भरने दो।
5: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
6: अरे तो जाने दो।
5: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें।

0: नहीं जा सकते।
1: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
0: लेकिन मुखिया जी,
1: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
0: जी मगर
1: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
2: मुखिया जी,
1: अब क्या है?
2: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
1: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
3: मुखिया जी,
1: चैन नहीं लेने देंगे। अब क्या है
3: जी? वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
1: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो, सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
3: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है। हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
1: नालायक, डरपोक! अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से। जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
3: जैसी आपकी मर्जी।
1: अरे ये तो सचमुच चला गया। कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर मेरे इस मकान की 3री मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या हो रहा है? नहीं, इतना मजबूत मकान भी गिर रहा है। हे भगवान, कहाँ जाऊँ मैं? ये पानी में डूब रहा हूँ मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ? अरे कोई है, अरे बचाओ मुझे, अरे मैं डूब रहा हूँ मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ लूंगा किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़,
3: आखिर पहुंच ही गया। यहाँ तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए। हाँ, शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: Dari Sakpentis, NCRT sponsor program yang ini pin umang media wave kan aja sakashwani kargili kana serinut waktu tu sumsonsuk kaseta akashwani Delhi kana Urdu service.

सामिन आपको बता दें, अब कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 हम पेश करेंगे जनाब वीरेंद्र पटवारी का तहरीर करदा ड्रामा ग्रहण। 4 बजे से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पज़ीर हो जाएंगी। तो सामिन, ये था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम में भी 1071 किलो हर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फिर डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

जिम्मेदारी संभालने के बाद आज मीडिया से खिताब करते हुए जनरल सेठ ने टेक्नोलॉजी से लैस और मुस्तकबिल के लिए तैयार एक ऐसी भारतीय फौज के मकसद को उजागर किया जो हर मामले में बाख्तियार हो और हर सूरत हाल में कार्रवाई करने की सलाहियत रखती हो। उन्होंने कहा कि फौज सरहदों और उभरते हुए खतरात के सिलसिले में मुसलसल चौकसी बरकरार रखेगी और कौमी सलामती को लाहक किसी भी चैलेंज से मौसर तौर पर निमटने के लिए कार्रवाई की आला सतही तैयारी रखेगी। जनरल सेठ ने कहा कि उनकी तवज्जो नजरियाती और तकनीकी दोनों हल पर रहेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज फ्रांस के चार रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हो गई हैं। वजारत खजाना के मुताबिक वो इस दौरे के दौरान आला सतह की दो तरफा मीटिंगों में शिरकत करेंगी जिनका मकसद भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मजीद मजबूत बनाना, इकतसादी ताउन को फरोग देना, सरमाकारी में इजाफा करना, नीस टेक्नोलॉजी व अख्तरा के शोबों में ताउन को बढ़ाना है। मोहतरमा सीतारमन फ्रांस के अपने हमनसब रोलैंड लेस्क्योर के साथ भारत फ्रांस इक्तसादी व माली मुजाकरात ईएफडी की मुश्तरका तौर पर सदारत भी करेंगे। ये मुजाकरात एक्स एन प्रोवेंस में मुनाकिद होंगे। वजारत खजाना ने कहा कि इस इजलास में दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन के नए इम्कानात पर तबादले ख्याल करेंगे और भारत फ्रांस इक्तसादी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के इकदाम पर गौरखोज करेंगे। दौरे के दौरान मोहतरमा सीतारमन चुनिंदा ग्लोबल सीईओज के साथ बिलमुशाफा मीटिंगें करेंगी और सरकर्दा कारोबारी एग्जीक्यूटिव के साथ गोलमेज बातचीत में शिरकत करेंगी। इन मीटिंगों का मकसद भारत के मजबूत कुल्ली इक्तसादी बुनियादों, जारी ढांचा जाती असलाहत, सरमायाकारी के मौके और तवील मुद्दती तरक्की के इम्कान को उजागर करना है। पासपोर्ट से मुतालिक तरमीमी जाब्तों 2026 के तहत नए पासपोर्ट की दरखास्त की फीस में आज से इजाफा कर दिया गया है। फीस के नजरसानी शुदा निजाम के तहत 36 सफहत के नए पासपोर्ट या पासपोर्ट दोबारा हासिल करने के लिए अब 2500 रुपए देने होंगे। 60 सफहत के नए आम पासपोर्ट या उसे दोबारा हासिल करने के लिए 3500 रुपए मुकर्रर किए गए हैं जबकि तत्काल स्कीम के तहत 6000 रुपए देने होंगे। 36 सफात के पासपोर्ट के खो जाने या उसे नुकसान पहुंचने की सूरत में उसकी जगह आम पासपोर्ट फिर हासिल करने के लिए फीस 5000 रुपए होगी। 60 सफात के पासपोर्ट के खो जाने या उसकी जगह आम पासपोर्ट फिर हासिल करने के लिए 6000 रुपए फीस तय की गई है। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने आज दावा किया है कि उसकी अफवाज ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर फिजाई हमले किए हैं। एक बयान में वजारत दिफा ने कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के सूबों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में वाके ISIS के मराकज पर किए गए। इन हमलों से ISIS और उनके हामियों को बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने कहा कि ये हमले इंतहाई दुरुस्त निशाने के साथ किए गए और इन हमलों में किसी आम शहरी की हलाकत नहीं हुई है। ये कार्रवाई पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका और कुन्नार में किए गए फिजाई हमलों के बाद किए गए जिनमें खवातीन और बच्चों समेत 36 आम शहरी हलाक और 163 अफराद जख्मी हो गए थे। इन हमलों के बाद अक्वाम मुत्तहदा में अफगानिस्तान के मुस्तकिल मिशन ने अक्वाम मुत्तहदा और आलमी बिरादरी से सूरत हाल पर गहरी नजर रखने की अपील की है। इन फिजाई हमलों पर आलमी सतह पर तश्वीश का इजहार किया जा रहा है। अक्वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने फौरी जंगबंदी पर जोर देते हुए तमाम फरीकों से शहरियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने की अपील की है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा कि आइंदा दो रोज के दौरान जनूब मगरबी मानसून के दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब की जानी पड़ने का इम्कान है। IMD ने अगले दो रोज के दौरान उत्तर प्रदेश बिहार उत्तराखंड उड़ीसा और विदर्भ में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मर्दों के क्रिकेट में भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज चेस्टर ले स्ट्रीट में रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। फीफा वर्ल्ड कप में आज सुबह मैक्सिको सिटी स्टेडियम में मैक्सिको ने नॉकआउट मुकाबले में इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया और प्री क्वार्टर

0: फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 बरस के दौरान गरीबों और महरूम तबकात को बाख्तियार बनाया है और लाखों अफराद के रहन सहन में आसानी पैदा की है। फौजी अमले के नए सरबराह जनरल धीरज सेठ ने बदलती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल के चैलेंजों से निमटने के लिए फौज की जदीदकारी पर जोर दिया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज फ्रांस के 4 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हुई। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले किए हैं और मर्दों की क्रिकेट में भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज रात खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम में भी 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामाईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में हेलो ब्रदर फिल्म का ये नगमा, नगमा निगार फैज अनवर, मौसीकार साजिद वाली।

और सामिन लीजिए, जब सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में जावेद अख्तर का लिखा गीत, जिसे मौसीकी सजाया है आर डी बर्मन ने, फिल्म है 1942, आ लव स्टोरी।

इस धर्म के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से पेशे खिदमत है जनाब वीरेंद्र पटवारी का तहरीर का ड्रामा ग्रहण।

0: वाह वाह जेफ, वाह वाह मेरे प्यारे पतिदेव, आप ग्रेट हो। नहीं नहीं ग्रेट नहीं, यू आर ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट।
1: ये कसीदा है या तंज?
0: तंज क्यों? बल्कि कसीदा ही नहीं माय डियर हस्बैंड, आई एम इम्प्रेस्ड। क्या फिल्म बनाई है, वाह वाह क्या बात है।
1: फिल्म नहीं, डॉक्यूड्रामा।
0: चलो वही सही। तुम तो नाराज हो जाते हो, नाम से क्या फर्क पड़ता है। अब देखो ना, मैं आपकी बीवी हूँ पद्मा, हूँ ना। अब कोई मुझे भाभी का नाम दे तो अरे तब भी मैं आपकी बीवी हूँ, हूँ ना। वैसे ही अगर मैंने आपकी डॉक्यू ड्रामा को फिल्म का नाम दे दिया तो खैर छोड़ो ये सब। वैसे आपकी क्रिएशन बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है।
1: थैंक यू, थैंक
0: यू। अच्छा चलो अब खाना खा ले, चौथी बार गर्म कर चुकी हूँ।
1: पद्मा तुम खा लो, मैं एक बार फिर
0: चार बार तो मैं भी देख चुकी हूँ आपकी डॉक्यू ड्रामा।

0: पद्मा कुछ तो है जिसकी वजह से ग्रहण लग चुका है। ग्रहण को हटा दूंगा तब मेरी कोशिश कामयाब हो सकती है, वरना नहीं।
1: तो आप टाइटल बदलना चाहते हैं?
0: अगर टाइटल पर ग्रहण लगा है तो ग्रहण हटाना होगा।
1: जय, फिल्म अच्छी है, मौजू अच्छा है, असलूब अच्छा है और
0: पद्मा, मैंने तुमसे राय नहीं मदद मांग ली है, ठीक है? अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकती तो मैं सही, लेकिन
1: अच्छा अच्छा बता तो दो कि मुझे करना क्या है।
0: गीत गोविंदा लिखने वाले जयदेव की बीवी का नाम भी पद्मा था, पद्मावती।
1: मालूम है, और ये भी मालूम है कि वो नाचनी थी और जयदेव इंस्पायर होकर लिखता रहता था। चलो चले
0: कहाँ?
1: अरे आप इस एडिटिंग रूम को छोड़कर मेरे साथ मंदिर चलो, मैं नाचती रहूंगी और अपनी नई फिल्म की फिल्म कारी कर लेना। गीत गाते गाते। अरे तुम फिर नाराज हो गए पति देव, आपकी फिल्म सॉरी डॉक्यूड्रामा मुकम्मल है, अच्छी है, वेरी मीनिंगफुल एंड इम्प्रेसिव, हर फ्रेम हर सेगमेंट उजला है, या कहीं भी अगर तारीख धब्बा नजर आता है तो ग्रहण के बारे में सोचा जा सकता है।
0: ऐसा तुम कह रही हो? तुम जिन लोगों को जयदेव से कुछ तवक्कात है वो अपने जावियों से मेरी फिल्म देख लेंगे।
1: जयदेव, सच का चेहरा एक दायरे की मानंद होता है और दायरा हर जावे से दायरा ही नजर आता है। सच की तस्वीरें दिखाकर तुम्हारा काम खत्म हो जाता है। लेट्स कंक्लूड प्लीज, कुछ खा पी लें
0: फिर वो बात, शाम को नाश्ता लंच ब्रंच और डिनर कर लेंगे, ऑल इन वन, ऑल इन वन नोश फरमाएंगे
1: शाम को। अरे रात का पहला पहर भी खत्म होने जा रहा है, तुम्हारे वो कद्रदान जो कुत्ते के पिल्ले और इंसान के बच्चे को किसी पांच सितारा होटल से फेंका हुआ झूठा खाना एक साथ खाते हुए दिखाकर जहां अजीम फिल्मकार होने का दावा करते हैं,
0: अपने आप को साबित करते हैं, इनामात और एजाजात लेते रहते हैं।
1: हाँ हाँ उनकी ही बात कर रही हूँ, वही तो है जो पुरसुकून झील की सतह पर कंकर फेंक कर दायरे पैदा कर देते हैं, एक दूसरे का ताकुब करने वाले दायरे, जिनको देखकर आप जैसे माशरे की सही तर्जुमानी करने वाले कलमकारों या फिल्मकारों की सोच की नहज बदल देते हैं। झील सामने होती है मगर संगलाख जमीन से पानी निकालने की बातें करते हैं।
0: तुम कहना क्या चाहती हो?
1: वही जो तुम रिबाउंड करके वापस कर रहे हो।
0: ठीक है, बजने दो।
1: अरे रात को कोई बिना वजह फोन नहीं करता, खासतौर पर अच्छे लोग सनसनीखेज माहौल पैदा करने से गुरेज करते हैं। तुम अपनी फिल्म एक बार क्या 10 बार और देख लो, ग्रहण की खोज करो। मैं ये देख लूंगी कि दिन भर जो फोन की घंटियां बजती रही वो एक ही शख्स की तो नहीं है।
0: तुम अगर एडिटिंग रूम से बाहर गई तो मैं दरवाजा लॉक करके तुम्हें वापस नहीं आने दूंगा।
1: क्या ये सुनकर आई एम शॉक्ड नॉट सरप्राइज्ड। हेलो हेलो नटराज अंकल, नमस्कार, खैरियत तो है ना?
2: अरे हम सब ठीक है बेटी, तुम लोग बाहर गए थे क्या?
1: नहीं तो अंकल। अच्छा ये बताइए आंटी ठीक है ना?
2: अरे पद्मा बेटी, सब में वो भी शामिल है। सुनो मैं दोपहर से फोन कर रहा हूँ।
1: अच्छा अच्छा तो वो आप थे। अरे अंकल आप घर आ जाते तो शायद आपका शागिर्द अपने जावियों के चक्कर से बाहर निकल आता।
2: मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। पद्मा बेटी ये ग्रहों का चक्कर ये बचपन से सुनते आए हैं, ये जावियों का चक्कर क्या है?
1: अंकल जय अपने ऑब्जेक्ट को दूसरों के जावियों से देख देख कर एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जहाँ से निकल ही नहीं पाता।
2: ठीक है जय को फोन दो।
1: अंकल जय अपने एडिटिंग रूम में है, बाहर आता ही नहीं।
2: बहुत ही डिवोशन के साथ काम करता है। भाई जी ने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है क्या?
1: नहीं अंकल वही पुराना प्रोजेक्ट है।
2: जय ने मुझे इतला दी थी कि वो फिल्म मुकम्मल हो चुकी है, मैं उसी फिल्म के बारे में जय से बात करना चाहता हूँ।
1: क्यों अंकल?
2: अरे जय अपनी फिल्म को इंडियन पैनोरामा में बतौर एंट्री भेजना चाहता है।

0: फिल्म में कोई प्रॉब्लम है?
1: नहीं नहीं अंकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियल सिचुएशंस, रियल करेक्टर्स, दिखावट के लिए कोई बनावट या सजावट नहीं। लेकिन जयदेव ने हर सेगमेंट इतनी खूबी से फिल्माया है अंकल कि लगता है जैसे एनेक्टेड सीन्स हैं।
0: अच्छा ये बताओ तुमने देखी है क्या?
1: अंकल एक दो बार नहीं बल्कि कई बार, आज भी सुबह से लेकर गई रात तक बार बार वही फिल्म तो देख रहे थे। अंकल जय इस वक्त भी वही फिल्म देख रहा है।
0: क्यों क्यों?
1: चंद रोज पहले एडिटिंग खत्म करने के बाद जब अपनी फिल्म अपने एक दोस्त को दिखा दी तो उन्होंने जयदेव की खूब तारीफ की। लेकिन
0: लेकिन क्या बेटी?
1: लेकिन उन्होंने कहा कि सब कुछ है मगर जयदेव टच नहीं है।
0: समझ गया समझ गया भाई। ऐसे लोग अक्सर ऐसे टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके क्रिएटिव माइंड में इंतजार पैदा करके अपने लिए एक मुकाम पैदा कर देते हैं। वी शुडंट टेक सच कमेंट सीरियसली। देखो अजय से कह दो कि वो मुझे मुंबई के पते पर फिल्म के सिनॉप्सिस फैक्स कर दे।
1: जी।
0: कल प्रपोजल सबमिट करने की आखिरी तारीख है।
1: अंकल आप जय को मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि वो कन्विंस्ड है कि फिल्म में किसी शेड या नोट की कमी है इसलिए वो सिनॉप्सिस नहीं देगा।
0: हाँ हाँ मैं भी जानता हूँ कि उसकी जिद की पकड़ बहुत मजबूत है मगर किया क्या जाए बेटी।
1: अंकल कई बार फिल्म देखकर मुझे सारी फिल्म जबानी याद है, फिल्म से फिल्म तक, मुकालमे, साथी असरात, सब सब कुछ अंकल।
0: बता बेटी फिर तुम सिनॉप्सिस देखकर सुबह सवेरे फैक्स कर दो, मैं जब दिल्ली आऊंगा।
1: अंकल आप
0: अरे घबरा गई
1: वो।
0: अरे बेटी टेंशन मत लो, जय को समझा दूंगा कि पद्मा ने उसके सच को सही डायरेक्शन दी है। ये तुम ऐसा करो मुझे अरे फ्रेम बाय फ्रेम का नरेशन दे दो, मैं खुद सिनॉप्सिस लिख दूंगा। इजी हो गया भाई तू?
1: अंकल जय समझ रहा है कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ।
0: अरे मैं भी तुम्हारी आंटी को डिवॉइड ऑफ क्रिएटिविटी, नॉन क्रिएटिव वगैरह वगैरह कहता रहता हूँ। बेटी सच तो ये है, समझाने वाले से समझने वाला ज्यादा जहीन हो तो बात बन जाती है।
1: हाँ अंकल वो बात तो है। वैसे अंकल जय ने फिल्म की शुरुआत बता रावी की है और इंसानी ख्वाहिशात, दबी ख्वाहिशात, जरूरियात जिंदगी, हालात की सितम जरीफी, फितरत, खसलत वगैरह वगैरह के बारे में तमहीद बांधकर सहर से गई रात तक का एक कोलाज बनाकर पेश किया है। मुख्तलिफ किरदारों से एक सवाल पूछकर इंडिविजुअल सेगमेंट की शुरुआत की है और अंकल पहले सेगमेंट में एक नीम पागल से गुफ्तगू की है। ये नीम पागल नौजवान है, खूब रूह है और वो एक मंदिर के अहाते में भजन गाने या मंत्रों का जाप करने के बजाय भगवान को शेर सुना रहा है। अब जयदेव और इस किरदार की गुफ्तगू सुनाती हूँ अंकल। वक्त सहर, डायलॉग टू डायलॉग

0: था मैं ही तो हूं, मेरा कत्ल हुआ है ना इसलिए मेरा नाम मकतूल है। बात अपने तक ही रखना भाई वरना मुझे यहां से निकाला जाएगा। अच्छा आप चले जाओ, मैंने प्रार्थना करनी है यानी भगवान से बराहे रास्त गुफ्तगू करनी है।
1: आप?
0: हाँ मेरे बाप, मैं नीम पागल नहीं हूं, मुकम्मल पागल हुआ। मैं भगवान को मंत्र नहीं सुनाता, शेर सुनाता हूं। वही तो है जो मुझे रोके टोके बगैर सुनता है। बर्दाश्त करता है बर्दाश्त। बात अपने तक ही रखना भाई, किसी को कानों कान खबर ना हो मैं एक शायर हूं।
1: अपने तक ये बात भी रख दूंगा कि आप अपने शेर भगवान को सुनाते हैं।
0: मैं जान गए मगर शायर को पहचान गए। मैं एक शायर हूं भाई। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। बात अपने तक ही रखना भाई
1: जी, किसी को खबर तक नहीं होने

0: बाबा आप ये सब जानते हैं।
1: बिला शुबह
0: मेरी भगवान से बात हुई थी एक दिन, मगर पहचान गया कि किसको भेजे वो यहाँ खाक छानने, इस तमाम भीड़ का हाल जानने। आदमी है अनगिनत, देवता है कम, फिर भी भगवान ने आपको मेरी मदद के लिए भेजकर अपने भक्त पर एहसान किया है। जैसे जैसे वरना जिंदगी कट रही थी, ऐसे ऐसे एक बेजुर्म सजा हो।
1: जैसे जैसे जैसे आप शायर हो तो अपने शेर क्यों नहीं कहते, मेरा मतलब है कि फरमाते।
0: कैसे सुना दूं अपने तक ये बात रखना भाई। जब मेरा तखल्लुस शफक था तब मैं उफक पर नजर आया करता था, फिर एक शायर ने दौलत का सहारा लेकर छीन ली मेरी शायरी की कुलियात कुलियात कुलियात।
1: ये जानकर अफसोस हुआ, लेकिन आपने तब तक कुछ क्यों नहीं
0: किया? किया बहुत किया, लेकिन मेरी आवाज दबाई गई। शफक का कत्ल हुआ तो मकतूल बन गया। अरे बाबू ये दुनिया एक सर्कस है, शो है 3 घंटे का, जालिम जुल्म और मजलूम का। अमीर ताकतवर रिंग मास्टर है जो शेरे बबर को नचाता है।
1: क्या बात है,
0: लेकिन मैं हैवान नहीं हूं ना। उन्होंने एक गरीब शायर की शायरी चुरा ली।
1: चोर कहीं के।
0: मैंने तब से शोहरत याफ्ता सौदा का कलाम अपनाया है। अच्छा किया ना?
1: बहुत अच्छा किया,
0: मगर ये बात अपने तक ही रखना भाई, वरना गजब हो जाएगा।
1: अरे
0: गरीबी एक गुनाह है ना बाबू।
1: लेकिन दौलत मिल जाए तो गरीबी की जड़ें भी नाबूद हो जाती हैं, ये सही है ना?
0: हाँ हाँ सही है सही है।
1: अच्छा सुनिए, अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूं तो आप क्या करेंगे?
0: 1 करोड़? सिर्फ 20,000 रुपए दे दो, 20,000 रुपए दे दो, 20,000।
1: क्या करोगे ये रकम लेकर?
0: अपनी खुलियात शाया करके शफक को ग्रहण से आजाद कर दूंगा, मकतूल को नया जन्म दूंगा। हाँ नया जन्म।
2: जयदेव ने इस शॉट को डिसॉल्व करके एक सौजीदा मौसीकी का फेड इन किया है और एक अलामती शॉट का इस्तेमाल करके ग्रहण सदा सूरज को दिखाया है।
3: हो बहुत हो। अच्छा पद्म बेटी, अगले सेगमेंट में किसका इंटरव्यू दिखाया है?
2: एक सियासी लीडर का मुख्तसर मगर दिलचस्प इंटरव्यू।
1: सड़क पर थे सभी जुलूस में शामिल हुए।
0: आपको कोई एतराज है?
1: नहीं एतराज क्यों हो, ये सदाबहार कौन है?
0: आपने नारे नहीं सुन लिए क्या?
1: हाँ,
0: गरीबों का मसीहा यानी सदाबहार।
1: सदाबहार ये नाम है या तखल्लुस?
0: तखल्लुस शायद लोग खुद ही अपने नाम के साथ जोड़ देते हैं, जबकि लीडरों को लोग अलकाब से नवाजते हैं।
1: आपके भी लीडर हैं?
0: भी मतलब?
1: नहीं नहीं, अगर मेरा अंदाजा सही है तो
0: भी आप कहना क्या चाहते हैं?
1: देखिए कड़ाके की सर्दी में ये आपने फटा कम्बल ओढ़ लिया है, जाहिर है कि आप भी।
0: हाँ मैं भी गरीब हूँ, हमारा मुल्क ही गरीब है। बेशतर लोगों के पास ओढ़ने के लिए फटी कंबल भी नहीं होती, बल्कि तन ढांपने के लिए कपड़े नहीं होते, और उस पर तुर्रा ये कि फुटपाथ पर सर्द हवाएं रोकने के लिए ना दीवारें होती हैं और ना बारिश से बचाव के लिए छत होती है।
1: ये एक तल्ख हकीकत है, हम दोनों की सोच मिलती जुलती है, जाहिर है समझ और ख्यालात भी एक जैसे होने चाहिए।
0: मेरी तरफ से हाँ है। उबल खत्म के गरीबों की बदहाली देखकर आप भी तड़प उठते होंगे। अक्सर दिल में एक हूक सी उठती होगी, फिर दर्द होता होगा, दर्द नहीं कर्म का एहसास आपके वजूद को झटके देता रहता होगा।
1: अक्सर ऐसी कैफियत जहन पर तारी होती रहती है।
0: अगर ये आपके दिल की

0: तो कुछ करते क्यों नहीं?
1: कुछ करूं? तो मान लीजिए अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूं तो?
0: तो मैं फॉर्मेलिटी के तौर पर भी नहीं नहीं नहीं कहूंगा, बल्कि रकम लेकर ये भी नहीं कहूंगा कि इसकी क्या जरूरत है। रकम ब्लैक में दे रहे हो या व्हाइट में?
1: ये सवाल पूछने की क्या जरूरत है?
0: तो नहीं, व्हाइट में दोगे तो 40 लाख टैक्स में निकल जाएंगे।
1: समझ गया।
0: हाँ।
1: समझ गया मैं। फिर ब्लैक में दूंगा। ये बताइए कि आप रकम का क्या करेंगे?
0: सदा बाहर से पूछ रहे हो कि रकम का क्या करोगे?
1: जी जी जी, जी।
0: हाँ, ब्लैक में देने का आपको बोनस भी मिलेगा। खुलकर बात कर रहा हूँ साहब। हाँ
1: जी बिल्कुल,
0: मैं आपको 40 लाख का चेक दूंगा जो व्हाइट में होंगे।
1: आप कौन है?
0: मैंने सोचा कि आप अब तक जान गए होंगे कि मैं सदाबहार हूं, गरीबों का मसीहा। शाम को घर आना।

0: पद्मा
1: जी,
0: जय ने क्या सेगमेंट को यहाँ कंक्लूड किया है?
1: नहीं नहीं अंकल, जय ने अपना डायरेक्टर पंच दिया है ना। सदाबहार के मुकालमे शाम को घराना के साथ ही एक लंबी विदेशी कार हॉर्न बजाकर खड़ी हो जाती है। सदाबहार अपने फटे कंबल को कार में रखकर कार से एक शॉल निकालकर ओढ़ लेता है, फिर कार में बैठकर चला जाता है।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है! मुझे मेरे कदरदानों ने फिल्मों के द्रोणाचार्य का लकब दिया है। मेरे ख्याल में जय खुद ही साबित कर देगा कि वो दोनों एक साथ
1: अर्जुन पांडव है। अंकल, अगला सेगमेंट तो और भी दिलचस्प है।
0: अच्छा?
1: हाँ, जय ने ये सेगमेंट जितनी खूबसूरती और फितरी अंदाज में फिल्माया है ना, वो अपनी जगह। और वो कहानी अंकल मैं फिर कभी सुनाऊंगी। पहले ये बता दूं कि जय कश्मीर में वहां के दस्तकारों, सियाहत से ताल्लुक रखने वाले होटल वालों, शिकारे चलाने वालों और हाउस बोट के मालिकों पर अपनी सारी तवज्जो देना चाहते थे, मगर इंटरव्यू किया एक मजलूम औरत का।

0: दादी, जो साथ आ सकते थे वो पिछड़ गए हैं मुझसे।
1: आप पर्दा उठाकर यहां बैठ जाएं।
0: आप पर्दा उठा दूं? क्यों? अपनी इज्जत और आबरू बचाने की खातिर तो हम घर से बेघर हो गए हैं। तुम लोगों को देखकर मैं समझ बैठी थी कि बियाबानों में बाहर आई है, लेकिन तुम
1: प्लीज प्लीज आप गुस्सा थूक दो प्लीज। हम लोग जिसका यहां इंतजार कर रहे थे वो गालिबन आप नहीं है।
0: मैं ही तो हूं जो बच गई मर मर कर जिंदा रहने की खातिर।
1: मैडम मैडम मैं
0: मैडम मां नहीं कह सकते।
1: माता जी आप मेरी बात आराम से सुन लें प्लीज। देखिए हम यहां जिस फीमेल सामाजिक कारकुन का इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं हम समझ बैठे आप वही हैं, यकीन कीजिए प्लीज।
0: क्यों क्यों हमारे हाल बद की तस्वीरें खींचकर उन्हें पेंटिंग्स बनाकर उनको बाजार में सजाने की खातिर? हाँ इमोशनल ब्लैकमेल?
1: नहीं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है प्लीज ट्रस्ट मी। देखिए हम चाहते हैं कि दुनिया वाले आप लोगों की हालत से बाखबर रहे। लगता है कि आप भी जुल्म और सितम का शिकार हुई हैं, है ना?
0: हाँ और नहीं तो क्या, सहर से शाम तक और फिर शाम से सहर तक शायद ही कोई लम्हा ऐसा है जब हमें कभी कहर आदम या कहर खुदा से पैदा हो रहे हैं। अजाम अजाम

0: 당신은 이혼을 자당. 사지만이.
1: 이때 이게 마음 비대고 스쿠메셔리 끝나자디에 도메니.
2: Yes, yes, my son. I trust you. 서비스 드려요. 저, 저 왜 동고 동 섞고 그슈미리 개바 피나도 그 바테 가는게. 이거 यहाँ पास ही मेरा घर है।
0: अच्छा अच्छा।
2: घर क्या एक छत है जो चार कच्ची दीवारों पर खड़ा है।
0: देखिए पहले हम आपको चाय पिलाएंगे। प्लीज बैठिए प्लीज।
2: Why? Why the formula? माँ बेटे के खुलूस में अपनायत की आँच सुहानी आँच को महसूस कर चुकी हूँ मैं।
0: देखिए और मुझे आपकी बातों में बल्कि गुस्से में भी दर्द की चीख सुनाई दी थी और एक मां को अपने सामने देखकर सुकून महसूस कर रहा हूं।
2: देखो तो एक वो है जो मां को बेटे से जुदा कर गए और अब तुम हो जो गैर होकर भी मुझे बेटे के सामने बेटे का एहसास दिला रहे हो। शुक्रिया बेटा।
0: जी माता जी मैं एक सवाल पूछ लूं?
2: पूछने की जरूरत नहीं, मैं समझ गई हूं कि बेटा मां से क्या पूछना चाहता है।
0: जी
2: मैं इस दूर दराज पहाड़ी इलाकों में आठ आठ फुट बर्फ पर धस धस कर चलकर क्या ढूंढ रही हूं? हाँ यही ना बेटे, हम लोग यहां भाग कर अपने घर खुले छोड़कर यहां एक गांव में पनाह लेने आए थे।
0: तो क्या आप भी मुसलमान होकर गालिबन मेरा अंदाजा सही है ना?
2: हाँ मैं मुसलमान हूं मगर सितमजद हूं, क्योंकि सितमगर मुहज्जिब नहीं होता, इसलिए मजहब के नाम पर मसीहाई का दावा करने वाले अपने मकसद और मतलब को मजहबी रंग देते हैं। बेटे
0: गोया आप भी अपने हमवतन हिंदुओं की तरह हिजरत कर गए हैं।
2: अरे वो अच्छे रहे जो दूर दूर रहकर भी अपने घरों में लौटने की हसीन ख्वाब देखते रहते हैं। हम आस पास रहकर अपनों से बहुत दूर हो चुके हैं।
0: उनके बेटों को गोलियां मार मार कर खौफ ज्यादा करके भगाया था।
2: मेरे बेटों को दहशत कर बरगला कर ले गए थे और वो सड़क पार करते वक्त फौज की गोलियों का शिकार हो गया। मेरी बेटी अपनी आबरू बचाते हुए जान गंवा बैठी। मेरे शौहर का कसूर ये था कि उन्होंने एक फौजी का ऑपरेशन किया था। वो डॉक्टर थे ना, डॉक्टर रहमान भट्ट मरहूम। उसी रात उनकी कार रोक कर उन पर गोलियों की बौछार हुई थी। ये जुर्म सजा पाए थे मरहूम। मुझे यूनिवर्सिटी जाने के लिए गनमैन अपने साथ ले जाने पड़ते थे। मैं एक प्रोफेसर थी ना, प्रोफेसर जाहिदा भट्ट, जिसको सरकार ने इंसान दोस्त डॉक्टर मरहूम डॉक्टर भट्ट की बेवा होने की वजह से जजा दी, तो दहशत गर्दों ने उसको एक गांव में गुमनाम जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर
0: किया। तशद्दुद की इंतहा हो गई।
2: और आप हिजरत करने वालों का बार बार जिक्र भी करते रहते हैं बल्कि फिक्र भी। कश्मीर में रहने वाले शिकारे या हाउस बोट वालों के बारे में फिक्रमंद है, लेकिन हम जैसे बदबख्तों के बारे में कोई जानता भी नहीं।
0: देखिए मनु बर्फ के तोड़ों के नीचे अगर सारा गांव दब गया था तो आप लोगों को कैसे बचाया गया?
2: फिर एक बार मिलिट्री ने कारी मसीहाई करके साबित कर दिया कि वो हर आफत का मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने जाबाजी का काम करके आठ आठ फुट बर्फ काट कर हमें मौत के मुंह से निकाल दिया।
3: जयदेव की फिल्म देखकर सभी जान जाएंगे अंकल। हाँ प्रोफेसर जाहिदा के अंजाम पे रोना आया।

0: गोया आंधियों से गुलशन उजड़ गया और सैलाबों से बीच तक उखड़ गया।
1: यूं लग रहा है जैसे मुझे रास्ते में पड़ा हुआ किसी बदनसीब का खत मिला, कुछ खूने जिगर से लिखा हुआ, कुछ आंसुओं से मिटा हुआ।
0: और सबसे चौंका देने वाली बात यह है अंकल कि जब बातों बातों में प्रोफेसर जाहिदा से 1 करोड़ की बात की तब उसने वो रकम उन फौजियों की बेवाओं को देने की दिली ख्वाहिश का इजहार किया जिनको दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया है। खैर, अगला सेगमेंट भी बहुत इंप्रेसिव है अंकल और बहुत कुछ कन्वे कर रहा है। इस सेगमेंट की शुरुआत एक एग्जामिनेशन सेंटर के इर्द गिर्द छाए माहौल से हो रही है। वासु इस हिस्से का मरकजी किरदार एक नौजवान लड़का है। वो कई लड़कों को उनके मुश्किल सवालात के हल बता चुका है। फिर जब तमाम उम्मीदवार हॉल में दाखिल हो जाते हैं वो तन्हा है और फटी फटी आंखों से हॉल को देख रहा है।
2: ये जो लड़के आपके आसपास आते जाते रहे क्या आपके दोस्त हैं?
3: हाँ, कुछ अजनबी भी थे।
2: आपसे क्या पूछ रहे थे?
3: टेस्ट में अच्छे परफॉर्मेंस के टिप्स और उन सवालों के हल या जवाबात जो उनको नहीं आते थे।
2: आपको आते थे?
3: हाँ, और वासु करे तो क्या करे। सारा कॉलेज जानता है सबसे अच्छा स्टूडेंट हूँ ना। मुझे शाइनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है।
2: That's very good, very good. ये टेस्ट किसके लिए जा रही है?
3: MBBS के दाखिले की खातिर।
2: आपका एडमिशन हो चुका?
3: नहीं, और कभी होगा भी नहीं।
2: क्यों? आप तो शाइनिंग स्टार हैं।
3: उससे क्या होता है, अब वासु करे तो क्या करे। मेडिकल कॉलेज में उसको दाखिला मिलता है जो रिजर्वेशन के दायरे में आता हो, जो सिफारिश के पर लगा के उड़ सकता हो या फिर डोनेशन दे सकता हो। मेरे पिताजी एक क्लर्क हैं।
2: वासु, ये क्या शाइनिंग स्टार होते हैं क्या? अच्छा ये बताओ कि अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूं तो आप क्या करेंगे?
3: 20 लाख अपने MBBS के एडमिशन के लिए, 10 लाख अपने MD के दाखिले के लिए, बाकी रकम अपने पिताजी को दूंगा ताकि वो मेरे 2 छोटे भाइयों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सकें,
2: अच्छा,
3: खूब खिला पिला सकें और अच्छे कपड़े पहना सकें, मेरी बहन की धूमधाम से शादी करवा सकें और अपने लिए गर्म कपड़े ला सकें और फौरी तौर पर एक नया जूता खरीद सके। उनके जूते उनके पैरों को बिच्छू की तरह डंक मारते रहते हैं।
1: वाह, समंदर को पूजे में बंद कर दिया जय।
0: बस सकेंगे इस विजुअल पंच अंकल। आखिर में वासु की अश्कबार आंखों पर आसमान में तैर रहे काले बादलों का एक इफेक्टिव शॉट गरज की गूंज ओवरलैप कर दिया है।
1: अपने जय की फिल्म की गूंज दूर रहकर भी पास पास सांस पास सुनाई दे रही।
0: गोया आपको भी जयदेव की फिल्म अच्छी लगी?
1: और नहीं तो क्या। आखिर नटराज के शागिर्द की तकलीफ है।

सामिन भी आप सुन रहे थे जनाब वीरेंद्र पटवारी का तहरीर करदा ड्रामा ग्रहण। पेशकश मोतीलाल काचरू की थी। हिस्सा लेने वाले फनकार थे श्याम अरोड़ा, जयश्री अरोड़ा, नीरज शर्मा, हर्ष बाला, कीमती आनंद, चांद नारायण सक्सेना और रश्मि नागपाल। माविन थी रिहाना बेगम। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश कश्मीर की कली फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में, नगमा निगार एस एच बिहारी, मौसीकार ओपी नैयर।

और सामिली जब सुनी अलका याग्निक, बाबुल सुप्रियो और साथियों को, फिल्म है चोरी चोरी चुपके चुपके, नगमा निगार समीर, मौसीकार अनु मलिक।

मिशन कश्मीर इस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे। शंकर महादेवन और साथियों की आवाज़ों में नगमा निगार थी राहत इंदौरी, मौसीकार शंकर एहसान लॉय। और समझ लीजिए सुनिए लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाटकर की आवाज़ों में आर डी बर्मन की मौसीकी से जाए नगमा। फिल्म है बेमिसाल।

नाम है राही प्यार की। इस फिल्म का नाम आप सुन रहे थे कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार थे समीर, मौसीकार नदीम शर्वन। और सामिन ने जब सुनी मोहम्मद रफी की आवाज में जौहर इन कश्मीर फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया कल्याण जी आनंद जी ने।

सच्चा झूठा फिल्म का ये दुगान आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। प्रोग्राम की अगली पेशकश किशोर कुमार की आवाज में आक्रमण फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारे।

सुहाना।

0: सामिनी सरगमी के साथ ही आज का फिल्म मौसीकी का प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1171 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फिर डिश पर। शाम के 4:50 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: अब आप अर्जुमंद अली खान से

सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 बरस के दौरान गरीबों और महरूम तबकात को बाख्तियार बनाया है और लाखों अफराद के रहन सहन में आसानी पैदा की है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज फ्रांस के 4 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हुई। फौजी अमले के नए सरबराह जनरल धीरज सेठ ने बदलती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल के चैलेंजों से निपटने के लिए फौज की जदीदकारी पर जोर दिया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले किए हैं और फीफा आलमी कप में मैक्सिको इक्वेडोर को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने गुज़श्ता 11 बरस में मुल्क भर के शहरियों के लिए राबते, तालीम, माली लेन देन और सरकारी खिदमात तक रसाई के तरीके को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। इस अरसे में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे DPI निज़ाम में से एक कायम किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने खसूसन देही और पसमानदा इलाकों में सेहत, तालीम, हुनरबंदी, ज़राअत और फलाही खिदमात तक रसाई को वसअत दी है। भारत तेजी से डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे DPI के शोबे में एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभर रहा है। इस कामयाबी की बुनियाद काबिले तौसी और शहरियों पर मरकूज डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स हैं। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल बुनियादी ढांचे के निज़ाम में ताउन के लिए 24 मुल्कों के साथ मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल शिनाख्त, डिजिटल अदायगी, डेटा के तबादले और सरकारी खिदमात की फराहमी जैसे शोबे शामिल हैं। अदायगियों का यकसा इंटरफेस UPI अब 8 से ज़्यादा मुल्कों में काम कर रहा है, जिनमें मुत्तहदा अरब अमारात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका शामिल हैं। इससे आलमी सतह पर मालियाती टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत की मौजूदगी मजीद मुस्तहकम हुई है। इसी तरह आधार, डिजी लॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे प्लेटफॉर्म्स आलमी सतह पर डिजिटल हुक्मरानी के नए मॉडल की तश्कील में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया मुहिम ने हुक्मरानी के निज़ाम को नई शक्ल दी है, शहरियों को बाख्तियार बनाया है और हमजहत तरक्की को तेज किया है। मुहिम के 11 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर-ए-आज़म ने डिजिटल इंडिया ने जिंदगी के हर शोबे को मुतासर किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आसान डिजिटल अदायगी और फवायद की बराह रास्त मुंतकली के जरिए मुस्तफिदीन तक शफाफ अंदाज में सरकारी स्कीमों के फायदे पहुंच रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि टेक्नोलॉजी आवाम की जिंदगी को आसान बनाने का एक मौसर जरिया बन चुकी है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज फ्रांस के 4 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हो गई हैं। वजारत खजाना के मुताबिक वो इस दौरे के दौरान आला सतह की दो तरफा मीटिंगों में शिरकत करेंगी, जिनका मकसद भारत फ्रांस किलीदी शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाना, इक्तसादी तआवुन को फरोग देना, सरमायाकारी में इजाफा करना, नीस टेक्नोलॉजी और अख्तरा के शोबों में तआवुन को बढ़ाना है। मोहतरमा सीतारमन फ्रांस के अपने हम मनसब के साथ भारत फ्रांस इकतसादी और मालियाती मुजाकरात की मुश्तरका तौर पर सदारत भी करेंगी। ये मुजाकरात एक्स इन प्रोविंस में मुनक्किद होंगे। वजारत खजाना ने कहा है कि इस इजलास में दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तआवुन के नए इम्कानात पर तबादला ख्याल करेंगे और भारत फ्रांस इकतसादी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के इकदामात पर गौर खोज करेंगे। दौरे के दौरान मोहतरमा सीतारमन चुनिंदा ग्लोबल CEOs के साथ बिलमुशाफा मीटिंगें करेंगी और सरकर्दा कारोबारी एग्जीक्यूटिव्स के साथ गोलमेज बातचीत में शिरकत करेंगी। इन मीटिंगों का मकसद भारत के मजबूत इकतसादी बुनियादों, जारी ढांचा जाती असलाहत, सरमाकारी के मौाक़े और तवील मुद्दती तरक्की के इम्कान को उजागर करना है। जून के महीने में अदायगियों के UPI निज़ाम के तहत लेन देन में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 23% का इजाफा हुआ और ये 2 अरब 20 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि UPI लेन देन की मालियत 20% बढ़कर पिछले महीने 28 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गई। अदायगियों से मुतालिक भारत की कौमी कॉरपोरेशन की जानिब से जारी किए गए आदादोशुमार के मुताबिक औसत बुनियाद पर जून के महीने में यू

0: सिंचाई के तहत रोजाना तकरीबन 75 करोड़ 70 लाख की के लेन देन हुए। 8 से ज्यादा मुल्कों में यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है, इनमें मुत्तहद अरब अमारात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशियस और श्रीलंका शामिल हैं। इससे आलमी सतह पर फिनटेक के शोबे में भारत की मौजूदगी को तकवीत मिली है। अशिया और खिदमात टैक्स जीएसटी की वसूलियाबी गुज़श्ता महीने बढ़कर 1,94,812 करोड़ रुपए हो गई, जो जून 2025 में 1,71,105 करोड़ रुपए से साल बसाल 13.9% का इजाफा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। फौजी अमले के नए सरबराह जनरल धीरज सेठ ने सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरतहाल के चैलेंजों से निपटने के लिए फौज की जदीदकारी की जरूरत पर जोर दिया है। फौजी अमले के 31वें सरबराह की जिम्मेदारी संभालने के बाद आज मीडिया से खिताब करते हुए जनरल सेठ ने टेक्नोलॉजी से लैस और मुस्तकबिल के लिए तैयार एक ऐसी भारतीय फौज के मकसद को उजागर किया जो हर मामले में बाख्तियार हो और हर सूरतहाल में कार्रवाई करने की सलाहियत रखती हो। उन्होंने कहा कि फौज सरहदों और उभरते हुए खतरात के सिलसिले में मुसलसल चौकसी बरकरार रखेगी और कौमी सलामती को लायक किसी भी चैलेंज से मौसर तौर पर निपटने के लिए कार्रवाई की आला सतही तैयारी रखेगी। जनरल सेठ ने कहा कि उनकी तवज्जो नजरियाती और तकनीकी दोनों हल पर मरकूज रहेगी। पासपोर्ट से मुतालिक तरमीमी जाब्तों 2026 के तहत नए पासपोर्ट की दरख्वास्त की फीस में आज से इजाफा कर दिया गया है। फीस के नजरसानी शुदा निजाम के तहत 36 सफहात के नए पासपोर्ट या पासपोर्ट दोबारा हासिल करने के लिए अब 2,500 रुपये देने होंगे। 60 सफहात के नए आम पासपोर्ट या उसे दोबारा हासिल करने के लिए 3,500 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, जबकि तत्काल स्कीम के तहत 6,000 रुपये देने होंगे। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने आज दावा किया है कि उसकी अफवाज ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर फिजाई हमले किए हैं। एक बयान में वजारत दिफा ने कहा है कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के सूबों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में वाकई आईएसआईएस के मराकज पर किए गए। इन हमलों से आईएसआईएस और उसके हामियों को बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने कहा है कि ये हमले इंतहाई दुरुस्त निशाने के साथ किए गए और इन हमलों में किसी आम शहरी की हलाकत नहीं हुई है। ये कार्रवाई पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के सूबे पक्तिया और कुनार में किए गए फिजाई हमलों के बाद किए गए, जिनमें खवातीन और बच्चों समेत 36 आम शहरी हलाक और 163 जख्मी हो गए थे। इन हमलों के बाद अक्वाम मुत्तहदा में अफगानिस्तान के मुस्तकिल मिशन ने अक्वाम मुत्तहदा और आलमी बिरादरी से सूरत हाल पर गहरी नजर रखने की अपील की है। इन फिजाई हमलों पर आलमी सतह पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने फौरी जंगबंदी पर जोर देते हुए तमाम फरीकों से शहरियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने की अपील की है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि आइंदा 2 रोज के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की जानिब बढ़ने का इम्कान है। फीफा आलमी कप में आज सुबह मैक्सिको सिटी स्टेडियम में मैक्सिको ने नॉकआउट मुकाबले में इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया और वो प्री क्वार्टर फाइनल के लिए उसने क्वालिफाई कर लिया है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और महरूम तबकात को बाख्तियार बनाया है और लाखों अफराद के रहन सहन में आसानी पैदा की है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज फ्रांस के 4 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हो गई हैं और फौजी अमले के नए सरबराह जनरल धीरज सेठ ने बदलती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल के चैलेंजों से निपटने के लिए फौज की जदीदकारी पर जोर दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में 1,071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फिर डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन, शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शाम में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: सामिन मोहतरम, अभी तक आप हमारी नशरियात

0: आकाशवाणी दिल्ली के उर्दू सर्विस से समात कर रहे थे। मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कारगिल से बोल रहे हैं। सामिन, आपसे लेकर रात के 10 बजे तक आप हमारी नशरियात मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज, मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज के अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। Assalamu alaikum, medium wave to Ghana, Yishish Binajbi kilohertz, medium wave Stanchikna, Ghana, Yishish Binajbi kilohertz, FM Gaisharia, Chik megahertz, and Achi mobile app, news on Ayarika, Achas Akashwani, Kargilikana, Zirinut. Waxpot to Sotorasonsuk, during Ijakpo Bodu, July Zichik, during Prochuk Payot P, program in Jubasta Kure, Achayanti Dunuklepsut, Achi Juna, Salampo, Prodmajan Sonshik. سخبتك نلنا دعايا برنامج صداقات لغزوبيت دي برنامج رخصكين مزات ارتخم قراني تلاوتنا ترجمة ملكان بوين شيخ محمد عيسى حافظي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: को ड्रग्स या तम्बाकू सिगरेट खनि दोन सगी कना चम चिक्षनुत खचनिन देश को लास को लटिसे ग यन तंग सखपे खलेप जुगे यले प्रोग्राम यन खनुन दिर दे लुक्सी प्रोग्राम पो चे तोन पो दियाविन कि ngati मिमंगसला हागो तंग मिमिंगना मिमंगसी दे लुक्स पोर याला लुस मिमिंगना ngachis दि प्रोग्राम मी स्टोलिका फ्रोमाचिक फेस पंगति डॉक्टर नुन लास्क्यो जिरे खोंसे फ्रोमाचिक जेरमोनिका हागो तंगिन निंगन खनुन यंते संगति डॉक्टर जिरखनी स्पेरानिका नाबसे अमल बचा ताकि ngati ngatang sagi ngati frubas bisi ngati nangai zanzo si ngati qomi sihat po gyala na khuchan lu su kasani tise gyantang chakpe khlep chuge dering ngati storia physician chc sangku and dr sahid iftikhar husain skotiyo dr aibikana di drugs ni di tambaku cigarette khani di niskorla chamshik ngati zukspeka duni shnot khachaniyo di shnyok sunikana ga zuk zirmori yongchin deskorla fespa tise
1: अलग अलग मी को ऊंचिन मगर केमिकल पौधा ऊंचिन कि या मैं न कतो अल्कोहल छंग आते जरित या मैं न कोकेन जरित या मैं नेरा एम्फेटामिन जरित ड्रग कतो ऊंचिन या मैं न कतो छंग पुखरां सुंग दे अलावा कैनेबिस या चरस दे चीज ऊंचिन दोन चीज है चिन जब न अगर जैसे पहला पहला लेन न कतो खोए पहले का साइड इफेक्ट चौंचिन या इफेक्ट चौंचिन दूला एक्यूट चीज जस्टिन देर या पुनर या पुनियां सबसे ख्यारिक लेना काफी टाइम चलेना का तो दूला आते क्रोनिक जस्टिन एक्यूट में आना चाहिए जैसे मैंने पहला पहले कोई मूड उन ठीक छचिन अगर कहो तो खुद सबसे परेशान होना कहो तो कोई मूड पर बढ़िया छचिन कोई परसेप्शन पर चेंज छचिन मिसाल के तौर खुद संबा तंग जस्ब या थोड़ा खो आराम चीज सुख छोड़चिन हल्के कोई संबा फिक्र पो सबसे एक दयानु एलिवेशन छचिन यानी मतलब दो बड़े छचिन सने दो सकल पहला पहले के दो इफेक्ट छचिन मगर अगर कहो तो कुले कुले रस दो जेंदो न कहो यानी देखा डिपेंडेंसी छचिन कसम तरकंगी सका एक फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी छचिन एक पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी इनकी अगर दे चीज पो मलेन न कतो एरे समचिन दुंगा बांग एंच मेंदुक नी चीज पो लास पो बांग एंच मेंदुक तब पैथोलॉजिकल चीज में खोज दे चीज पो मलेन खोर गो ठीक बस डुलचा मेन दो पैथोलॉजिकल इन खोर गो का असर सोस चना दे चोला असर बचिन दे अलावा यहां चीज होचिन खाची कतो जैसे ड्रग बुलेन न कतो यारा खाची पसीना ज्यादा होचिन पल्स रेट पो ज्यादा छचिन बीपी ज्यादा छचिन या मेन न कतो खवा एंजाइटी छचिन वसवसा या मैंने कहा तो खा परेशानी डिप्रेशन दे सकते हो चुन ज्यादा दिन का मैं कोई इफेक्ट पॉइंट बहुत साइड इफेक्ट को मैं नियम बोलूँ सिं डिपेंड्स हों तो ला हर चीज ला अलग अलग इलाज होता है चाहे मिसाल के तौर अल्कोहल ले उतना का तो अगर फोमी पकुजल जिन समान चाहूँ चिन या मैंने ओपीआईटी अगर ये उतना का तो नेल्ट्रक्सोन जरिए नहीं चिन या तो ला सिगरेट स्मोकिंग होना का तो गम्स हों चिन निकोटीन गम्स हों चिन चाहना का तो हर इलाज योत बट डेयर इज दो ला चल बरगोस दैट्स व्हाट चाउज मैं चाहूँ इलाज में से चीज सीख उनसे मैं दोनों गाच इस पर जेन उतना का तो दो एक्यूरेटली जस्ट चाहिए मैं दूसरे जेन उतने ताकि नता मिस डायग्नोज में छा चाहिए मैंने का तो नता दूसरे डायरेक्शन में छा कि सही इलाज को बांगे नत
0: दस नंगे हम बो दिरिंग इर दिलुक्सी प्रोग्राम पो थमाथोन अर्दियांग मायू दियां तार दे मोचोरी दुख दुख इंशाल्लाह नन में लुसना यों में भी प्रोग्राम पे यां तंग ना यां तो गेट दे मन पो नचंग सा इज इन चेस दे बोस ये जू खुदा नर सखमानी फगरे
2: दरे सकपाई अंतिस प्रोग्राम याने नुत पिन नर्देलुक्स मीडियम वेवी का अच्छा साकाश फानी कारगिली कना सिरिनुत वक्स पोत सो तगाने मिनर सुमचु सोगा सुनसु कसता प्रोग्राम यान मजद शर्बा नचुंग प्रोग्राम प्रचुखन पोईन असगर अली प्रोग्राम प्रोड्यूसर गुलजार हुसैन
3: अस्सलाम वालेकुम जुले आकाशवाणी करगिल केना शर्बा नचुनी प्रोग्राम पूज बजला करे ना असगर अली यंग रसी चिकनतानास का तुस छनुत नी जुना सलाम पु फ्रंट मचन सोशी अर्ध्यामा जगत दिनसी शर्बा नचुनी प्रोग्राम याने नजुगुत खान शर्मा सुनसे काका फोनो अछे नमो सक नन में सन मित्र का मुसनो ने मौजूद जुगत दिनसी शर्बा नचुनी प्रोग्राम प्यांग सख बजिक्सनला वान महोत्सव वीक यानी जंगली फेस्टिवल

0: केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 एई के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ईयर एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने।

0: ये प्रपोजल है जो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 मानव दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
0: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कम्प्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि वीबीजी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वर्षा विलियम्स। The government today approved the construction of a 6-lane road tunnel for National Highway 148AE in Delhi, connecting Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj. Briefing media in the national capital today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has also approved the construction of the 117.7-kilometre Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh.
0: आज कैबिनेट में दो बड़े फैसले लिए गए।
3: टुडे द कैबिनेट अप्रूव्ड टू मेजर डिसीजंस बोथ रिलेटेड टू हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। द फर्स्ट एड्रेसेस अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड इन दिल्ली फॉर इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी बिटवीन द नेशनल हाईवे कॉरिडोर एंड वसंत कुंज। सेवरल एफर्ट्स हैड बीन मेड ओवर द ईयर्स एंड टुडे दोज

0: 0001-4242 का।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: सुनो ना।
1: हाँ।
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ,
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
3: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
0: एलुमिस बनी नूह इंसानी रुख्स बचाई। हजरत अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम।

0: yaramazlarına old pension scheme ojin.
1: Kasa.
0: Deyang de old pension scheme pu type nis ojin ya. Chik pula zarchin Indira Gandhi National Old Pension ojin ya do men ma dhana khuriyang widow sa fela alag pension ojin ya disable sa fela yang alag pension ojin. Chana do men ma yang type chik chi ojin integrated social security scheme ojin. Chana dhana khuriyang yang सेम तीन टाइप हो चीन या चिकपू छिमी सा फिला चिक डाइवोर्स या विडो सा फिला दोना यहाँ चिकपू डिसेबल पर्सन सा फिला छाना ओल्ड पेंशन जरनगा दो मिन में यंग अगर का तुम्हारे जरनगा तो यंग यहाँ स्कीम सा जरनगा तो यहाँ चिक चीन चीन दाख मैरिज असिस्टेंस स्कीम हो चीन यहाँ जरना दो दरे बख्तुन बखानी बखान अगर का तो दिचिक बख्तुन बचीन नगा तो दे बमूल लत हो चीन यहाँ जरना
1: कैसा
0: चाना दो मिन में यहाँ स्कीम चोचिन नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम देन चोचिन
1: कैसा
0: अगर का तो नाम संग गा जगह चिगा अगर का तो अति फैमिली प्राइमरी ब्रेड अर्नर हो चिन दे अगर
1: कैसा
0: का तो ओदो का तो खुदा ना खास्ता अगर का तो खे मोच छाना का तो कोई फैमिली लत हो चिन यहाँ जरना वन टाइम असिस्टेंस हो चिन लगभग 20,000 सकपा हो चिन मैं अप टू
1: कैसा
0: 20,000
1: कैसा
0: चाना दो मिन में यहाँ स्कीम जरना का तो स्कॉलरशिप स्कीम हो चिन मिनिस्ट्री
1: कैसा
0: ऑफ ट्राइबल अफेयर ही रिवा स्कॉलरशिप हो चिन रिवा स्कॉलरशिप स्पेसिफिकली अति लद्दाख फिला चाहिए चाना ले ना कारगिल इसके स्टूडेंट्स ऑफ 10 ना 12th बेसिक का मेरिट बेसिक हो चिन हाँ जरना
1: कैसा
0: 10 ना 12th बेसिक का मेरिट शॉर्टलिस्ट सचिन दे 10 थे 30 प्रू सेलेक्ट सचिन 12th थे 35 प्रू सेलेक्ट सचिन दो मिन
1: कैसा
0: मा यंग नेशनल माती दे यूपीएससी सिलखानी फ्रू फ्रू सा हो चिन दे चाना ओदो नी फिला अगर का तो खो इस प्रिलिमिनरी एग्जाम का तो पास बस योदना का तो खो फिला थोप चिन दे फिला
1: कैसा
0: खो इस पहला दिन सा गामा पहला सबसे पहले अप्लाई बार गोशी ना जरना
1: कैसा
0: बख्शिस
1: कैसा जो छाना एरस माना दिया स्कीम खचिक माना रियल बाबा सेर्ची साजो दुनिया ना तंगाते स्कीम उन चाचिंग आते डिटेल यानु आते डिस्कशन भी फ्रलूस बेचू ताकि आता मिमास कौन ला दू ठीक बस हागो छाना दक्षर ऑल पेंशन स्कीम इसको ला मॉल बस वाजू छाना ऑल पेंशन स्कीम पुखरांग आता गसो का अप्लाई बारुशिन या दिल्ली ठीक पुचीन यदि प्रोसीजर पूछो चिन डॉक्यूमेंटेशन चो चिन दर्शस पोयरस नता मोल छ चुका सर
0: छाना दिरियंग ओल्ड एज पेंशन ऑफ सब बजेस नल लायर नजर ना दी ऑफलाइन हो जिन फॉर्म पुखरंग और
1: कैसा
0: अच्छी ऑफिस हो जिन बाजार ला ऑफिस हो तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस अदयान ना फॉर्म पुथ ऑप्शन या
1: कैसा
0: फॉर्म पु ऑफलाइन ऑप्शन छाना दयान ना फॉर्म पु लेन चा दयान ना फॉर्म पु लेने ना ओदो अधे का फोटो ता चाहो चिन डिटेल्स कहाँ चाहो चिन दो नयम्बो डॉक्यूमेंटेशन ची चिर गोशिन दरना यारा नजरना दो नयम्बो सबसे पहला बीपीएल राशन कार्ड गोशिन
1: कैसा
0: यारा नजरना चाम से स्कीम युत ना का तो दोन गांव में लगभग बिलो पॉवर्टी लाइन लाइन यार यारा
1: कैसा
0: नजरना छना दिरी स्कीम उनी फिला सा सक बात इसना लगाती इनकम क्राइटेरिया छिमी सा फिला ना बीपीएल राशन कार्ड हो चिन
1: कैसा
0: दो मिन मा यंग जरना का तो यारा डॉक्यूमेंटेशन जरना आधार कार्ड गोशिन एज प्रूफ गोशिन एज प्रूफ है जैसे कि मेडिकल दरे आती छिमी सा फिला डीओबी अटेंड थी मार्कशीट हो मामे दो माह मेत ना का तो मेडिकली का ना सर्टिफिकेट हो जा
1: कैसा
0: कि डॉक्टर इस बीच ताचिन दे कि खो 60 साल अबव सो सीन जरे
1: कैसा
0: चाना और मेडिकल सर्टिफिकेट पहुंचा दो मिन
1: कैसा
0: मागर का तो यंग वीडो इन्ना का तो खे मी मखपे डेथ सर्टिफिकेट हो चिन और दो खोंचा दो मिन मागर का तो डिसेबल डिसेबल इन्ना का तो खो फिजिकली चैलेंज इन्ना का तो खे नन्ना हो चिन यार आज ना यूडीआईडी कार्ड चो चिन या
1: कैसा
0: डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चो चिन और देंगे इसके आना चिक बुक खोंचा
1: कैसा
0: छाना दून गांव में यहाँ जरना डॉक्यूमेंट देना देना डॉक्यूमेंट सुन रोशन दो मिन में यहाँ जरना यंग नंबरदारी करना तस्दीक चिर रोशन वेरिफिकेशन की खो 60 साल अबाव सोचें दो ना ख्वा पेंशनी हकदार योद जरे
1: कैसा
0: और दे तस्दीक नामे रोशन दो
1: कैसा
0: मिन में इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम पु ओल्ड एज पेंशन देना इसका सेम ही यहाँ जरना
1: कैसा
0: दियंग इसके यहाँ फर्क से मांगने में दिया
1: कैसा
0: चना दियंग सिर्फ स्कीम पुचिक पु सेंटर स्कीम हो चीन और दिरी इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन पु सेंटर स्कीम इन दोना इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी

0: स्कॉलरशिप टाइप का सोच होना चाहिए, स्कॉलरशिप प्रोसीजर पूछ होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चू होना चाहिए, टाइमिंग पूरा सोच होना चाहिए, दर्शन पूरा आधा है रे सर पर समोल से जो कैसा
1: बख्शी जो स्कॉलरशिप बारा जरना का तो दरे दी स्कॉलरशिप का निज हो जस्ते चिकपुर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर थ्रू ऑनचिन चिकपुर रिवा स्कॉलरशिप ऑनचिन ने ना जरना
0: कैसा
1: दी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर स्कॉलरशिप पु ज्यादातर अक्टूबर खुरिया में इंजीनियर रहा जरना ऑनलाइन ऑनचिन दियो ऑनलाइन फ्रून गंगमास ऑनलाइन काचिन दे फिलहाल को लगा पहला डॉक्यूमेंटेशन ओमा जरूरी इन डॉक्यूमेंटेशन चो चिन जर बना यार अजर ना मेन पो देना इनकम क्राइटेरिया ओचिन इनकम सर्टिफिकेट दरे सगा पता हो दे कि इनकम सर्टिफिकेट पो तहसील ऑफिस ने तंग मत जरे
0: कसा
1: चना दी इनकम सर्टिफिकेट पो मना जरूरी चना दरे ना डिजिटलाइज सोसे इनकम पो खरा दियासी साली के नेलती डिजिटलाइज सोसे चना दे फिला पहला अप्लाई बाई जा ना चाम स्टूडेंट होता है जैसे बना अक्टूबर सक पर दांगा ता टाइम होते हैं चाहे अक्टूबर सक पर टाइम होता है ना कौन सी डॉक्यूमेंटेशन फिला अप्लाई बस से जाता है देखा ना डेट पु स्टार्ट छाची पोर्टल पु ओपन छाची कौन सी ड्यूस काम आया चीन में अच्छा ना एक तो दियो ऑनचिन इनकम सर्टिफिकेट को दूसरा ऑनचिन यार हाजिर ना एसटी चेजर बना दियो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इन मना एसटी मना जरूरी छ चिन सागा देन इसको अपलोड बचाय ऑनचिन यार हाजिर ऑनलाइन फॉर्म अपलोड अपलोड बचाय ऑनचिन तो मैं यहां बाकी यंग डॉक्यूमेंटेशन ऑनचिन जैसे कि बोनिफाइड सर्टिफिकेट या आधार कार्ड या मैं का तो यंग ची ची अकाउंट कॉपी ऑनचिन दोन गांव में इंस्टीट्यूट ला सबमिट बचे यार हाजिर ना दोन गांव में जरूरी इंस्टीट्यूट ला सबमिट बा इंस्टीट्यूट चजर बना दरे दिया अलग अलग स्कॉलरशिप पे अलग अलग क्राइटेरिया होते जैसे कि सबसे पहला स्टूडेंट खुरी सेक्शन चाला कौन चिन पोर्टल पूरी का और यहाँ स्टूडेंट चौक पोर्टल पर अपन छाची को देखे कौन काम आया चिन देर गया पुना इंस्टीट्यूट लेवल का कौन चिन यार ना स्टूडेंट खेरे इंस्टीट्यूट ला दे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट बाचिन दोना पोर्टल ही कसकांग मची कि इंस्टीट्यूट टी पोर्टल पुखरियां एका जनरेट छ चिन साम से स्टूडेंट इज अप्लाई बस गुजरे दोन गांव में इंस्टीट्यूट गांव में इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर हो चिन ना सर ना दे इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर ही पोर्टल पे गांव में जनरेट छ ची खोज ओदे कना वेरिफिकेशन बस ता चिन डॉक्यूमेंटेशन ता से ठीक बसे ना खोज ओदे कना वेरिफिकेशन बस ता चिन देर गया पुना चोक खोज चोक वेरिफिकेशन बस ता माची काची दे यों चिन ना सर ना शो छ चिन ई साम ची प्रूफ अप्लाई बस दे कना माची DNO डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हो चिंदे और पोर्टल पे जनरेट छा ची गचस दी गना गुलिया वेरिफिकेशन बेन स्टार्ट बा स्टार्ट बचिन माया छाना देर गया पुना लास्ट का सक वेरिफिकेशन छा ची देगना दी दिन ना हो चिंदे ना जरना वैलिडेट छे सेक्शन जो चिन उदे सक अप्लाई सो सर गया पुना वेरिफिकेशन सो सर गया अपना वैलिडेट छह सेक्शन चो छिन और दे वैलिडेट छ चिक दे गना देर गया अपना को पेने फुत्ता छिन यार आंसर ना अर दिरुन गांग मा ऑनलाइन यो छिन दे
0: बिल्कुल
1: दिया डॉक्यूमेंटेशन छ मामे जस बना फ्रू गांग मा पता हो छिन यार आंसर ना तेरे मा गांग मा स्कॉलरशिप्स का मा दे ज्यादातर फ्रू
0: बिल्कुल
1: छाना दोना आचा अवेयरनेस प्रोग्राम फिला मा स्कूल गांग मा छात पाया स्कॉलरशिप स्कीम जेरे फ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम आता दोना दीदी यंती थ्रू या मैं तो आचस यंग मीडियम दे चना और मीडियम थ्रू आचस फ्रू सगा जून गंगमा फ्रोच चुपी कोशिश बात पाया छाना दी स्कीम पो अक्टूबर आना स्टार्ट छाची अक्टूबर आना एक महीने टाइम आउचिन
0: बिल्कुल
1: एक महीने अप्लाई पे टाइम आउचिन लेकिन एक्सटेंड ना चाहते गया पुनः एक या दो बार एक्सटेंड माचस बची नहीं चाहना देर गया पुनः यहाँ एक्सटेंड छाचा मिन दे फिला सक चुक पोर्टल ओपन छाचे सगस फ्रू सगस खाचा छाना दिया एक ना टाइप नहीं सोचिन चिक प्री मेट्रिक आउचिन चिक पोस्ट मेट्रिक आउचिन प्री मेट्रिक यानी टेंथ बच्ची गयोक तुक यानी और यहाँ नाइन ना टेंथ इंक्लूड हो चीन देर क्या पुना पोस्ट मैट्रिक चो चीन पोस्ट मैट्रिक पे इलेवन थी कना गेन लचाम चिकोत न का तो क्लास होत न का तो दून गांव में पोस्ट मैट्रिक यहाँ इंक्लूड है चीन छाना दीदियाँ पेमेंट पु खोई फी ऐसा भी कहता हम चिक स्टूडेंट होते जैसे प्राइवेट स्कूल सां क्या रही हो चीन गवर्नमेंट स्कूल सां काम रही हो चीन छाना और फी ऐसा भी कहा खोई और स्कॉलरशिप
0: कैसा जो छा नदिया नया उस पर चिक दू भी पजूंगा ती फ्रू मांगमोस स्कॉलरशिप्स का दुखा जो लेकिन लास्ट का माना रीजन चिक अलग खुरी अलग रीजन चिका

0: yakwa scholarship thaw mindu ya reject song se onduk chane yeres nga ta ga zosta chi ga reject chachin ga so la shik chana ka tunga ta reject chachin zer chas pe re odun sa ode point sa ir highlight bacha ju ta ki nga ta ga tin sa ga ti phune yang ainda yong me pi time piano dun sa ya jak tuk aur sahi tarike ke di scholarship ka han
1: acha the reject pu che wajah pu khachi gyo chin jese ki sabse pehla launch agar ka to there is scheme tam mana scholarship scheme mana mangu chin ra zan na minority affair on chin education khuri on chin ya bendaka to tribal affair on chin ministry of disability khuri on chin chana odun ga me alag alag scheme utpana sak national scholarship portal pu sa chik chi gode
0: bilkul
1: chana portal pu chik chi ut pana khachi chi ba chin dar mana khachi scholarship ni se apply ba agar ka to ni se apply bana ka to khwe du chi chachin deduplication chachin ek ka khuri ka portal bu khuri ka chazban sa online ut pana sa online ut pana de khuri ka show ba chin ki di scholarship pu di scholarship pu khos do bars ka suk zere chana agar ka to do bars ka na ka to khwe scholarship ni score je chachin ranzarna sakbasi pehla do chun odo ek astan hai ma deduplication son so ma son su zere riya puna verification riya puna pada chin ma do deduplication duga min du zere chana agar ka to ode deduplication chana ka to reject chachin sabse pehla na dusra yo chin ranzarna kho is jese aadhar seeding ma bana ka to
0: bilkul
1: aadhar seeding ba mana zaruri inde chas mana payment pokhra dare account ne ma tacha mende aadhar based ho chin dbt chana direct पेमेंट सिस्टम उत्पना आधारित थ्रू चिन आधारित थ्रू उत्पना खो इस ची बच्चिन जरबना ज्यादा तारीस अकाउंट पना आधार पु सीट बस ओचा में सीट बस से मित पना ची छचिन जरबना या खोई अकाउंट नंबर पु माने शो बचा में अगर का तो सीट बस उतना का तो अकाउंट नंबर पु शो छचिन दे अगर का तो सीट बस से माने मित पना अकाउंट नंबर पु शो मचा ना का तो खोई अकाउंट पे माने पेने छचा में ना जर ना सीधा रिजेक्ट छचिन में चलो अदे फिला को मैसेज छचिन छचाओ अदे चोक सीट बसे अगर का तो मेद ना का तो पेमेंट पुदी ने जनरेट छे दे स्टूडेंट बुकरा मैसेज छे जी ना नजर ना अगर का तो दिया 15 विद इन 15 डेज अगर का तो खोस आधार सीट का तो बना का तो खुआ पे नहीं ओचिन मेन ना का तो यंग दोबारा यंग अगर का तो दो तीन चार बार सिंग आचस यंग मैसेज ता जी ना नजर ना दे मैसेज रिप्ले ता ता पुसा पाचस वेट बचिन में देर गया पुना यंग वेट बचा मेन माया
0: बिल्कुल
1: चना दो या तीन या चार बार चिंग अच्छा खुआ मैसेज आता हूँ मत मेरा ना चौक पेमेंट पु बातचीत और देखा ऑटो जनरेट है चिन माया मैसेज
0: बिल्कुल
1: चना आधार सीट में दुख जरे दे फिला चाम ची स्टूडेंट नंदो दोनों ला सबसे पहला जरूरी इनकी खोइस दी दें दाओ स्कॉलरशिप उस कंग से चौक और गया पुना खोइस आधार सीट दो में दुख सचा
0: कैसा
1: दो मना जरूरी
0: कसाजु छन यरेस दियंग मन रियलबा बसे गता आदि पॉइंट ऑन हाईलाइट बजु गावनी स्टोरी का गता फ्रुनी स्कॉलरशिप रिजेक्ट छन खाजु ताना गता रिस्पोंस दे दु पजु कि जितना हो सके गता प्रोसीजर पु सही तरीके के फॉलो बारु छदु और गता डॉक्यूमेंटेशन पु सही तरीके का अपलोड बहु छदाजु ताना जगह खची का गता दोम थोंग मचेन दु पजु कि इनकम एक सिग्नेचर माथोबा अपलोड बस हों या जगह खची का गता जल्दीबाजी अनुक रश छाना एस टी जगह के यंग डॉक्यूमेंट अपलोड बस हों या फलाने एस टी के यंग चीज एस टी अपलोड बस हों छाना ओवरऑल दुन गा में फिला यंग टाइम थपचिन छुपा जो दुन सक यंग एडिट बे फिला
1: ओदो नाचा डिफेक्ट बस ता चिन दे डिफेक्ट बस ता माने दोबारा कोइस ओदो अपलोड भाई अनचिन दरे जैसे कि गाची दिन रिजेक्ट मना बस ता चिन ज्यादातर फुस आई अच्छा डिफेक्ट बस ता चिन चेजर बना ज्यादा तरीके चियो जिन दर बना खची का सिग्नेचर और खची का सिस्टम हो जमे इनकम सर्टिफिकेट भी का या मैं ना का तो इनकम ही जाएगा यंग दिन दी अपलोड बस हो चिन यंग डॉक्यूमेंट ची एस टी जाएगा यंग डॉक्यूमेंट ची अपलोड बस हो चिन दोन गंग मा यो ना का तो अच्छा जी डिफेक्ट बस ता चिन डिफेक्ट बस ता माना चौक फ्रून खुनता मैसेज हो चिन की ड्यू डिफेक्ट हो सुजर और रिमा गंग हो चिन नाम संग गा ची शिक डिफेक्ट बस्ता ना का तो गा स्कॉलरशिप जी डिफेक्ट बस्ता ना का तो उदयं रिमार्क तंग वालों से नेहरा जो नाचा दी गया रेरे ना रेरे की दिया ची प्रॉब्लम पुदुक जरे
0: कसे
1: चना उदय प्रॉब्लम में फिला कौन इस ठीक बस उदय रिमार्क पुलता चाह रिमार्क पुलता से ना उदय हिसाब पी का कौन उदो अपलोड बचा डॉक्यूमेंटेशन पु सही बस है चाना देना गाँव चीन यंग रिजेक्ट छे चंग मुश्किल चो जमीन में
0: कस जो यंग स्पेर चिक दू दुख पजू लेकिन इम्पोर्टेंट स्पेर दू दुख जो चाहे जरना गाता जितना गाता क्लास पू हाई क्लास छे उतना गाता खर्चा खेमो छे था जो दक्षा गाता हायर एजुकेशन लगता ना मिसाल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट चिक दुख तुक पी जी बेन दुख तुक या पी एच डी बेन दुख तुक ख्वा जितना हो सके मतलब

0: खुई खर्चों अखराजात पंग खिमु छचिन दे खुआ आजके लैपटॉप ची जरूरत छचिना इंदर सोच लो खुआ आजके शोबी फिलांग काफी खर्चा छिन दून सक इंक्लूड छचिन मेन्दू इंक्लूड ग सोच था जिके बचिन दू ची गेरे साल पो बस मर छचो।
1: अच्छा दोन गांग मा इंक्लूड छचिन रा हजर न यूनिफॉर्म मा इंक्लूड छचिन बुक्स आ इंक्लूड छचिन या मेन दगा दो दरे आती लैपटॉप वैपटॉप सख इंक्लूड छचिन
0: कस
1: लेकिन त अब यूनिफॉर्म न सगस खों मा यंचिन मया
0: कस
1: ओ तो अदा बिल पु खों से इंस्टीट्यूट ला सबमिट बचा इंस्टीट्यूट इज देखा ना खों वेरिफिकेशन बस एरिया पना खों ओ तो इंक्लूड बस ता चिन
0: कस
1: फी सेक्शन पे दो मिन मा लैपटॉप इज न का तो लैपटॉप भी सो जरूरत यो न का तो जैसे कि फ्रू खची गों चिन देन द कंप्यूटर बखन आईटी
0: कस
1: पा या मिन न का तो कंप्यूटर साइंस ओ चिन दुन ला जरूरी छचिन दे बीसीए ओ चिन एमसीए ओ चिन सोरा दुन गांग मा एरा जर ना खुआ दिया खुंती कोर्स बुखुरियां कंप्यूटर की जरूरत छचिन दे स्टूडेंट उल्ला खुआ खुंती कोर्स पे अगर का तो लैपटॉप की जरूरत यो न का तो खुआ ओदो इंक्लूड बाई यहाँ चीन यहाँ हजर ना मिसलिनियस सेक्शन चौं चीन यहाँ हजर ना फी सेक्शन पे ओदो इंस्टीट्यूट खोरेस ता चीन यहाँ हजर ना ओदे बिल पु खों से इंस्टीट्यूट ला सबमिट बचा इंस्टीट्यूट ला सबमिट बाना खोस ओदे का खोस इंक्लूड बसे ता मा यहाँ चीन यहाँ हजर ना रिमार्क आता मा यहाँ चीन की ड्यू लैपटॉप फिलहाल इन जरे
0: कस लेकिन अर गलबा बस है रे स्मॉल बस आजू आता स्कीम उन गामा ले इन गलबा दुख पजू आता तो इस पर चाहे जाजा चिता में दुख नहीं बोंग आता दिन सी प्रोग्राम बथामा थों जो यारा यहाँ सरची आकाशवाणी करगिली पूरा टीम ही छोसना और जो सर मुझे जू ध्यान इन बोंगा सईद काजिम हुसैन या इजाजा चत बोस या जू खुदा ना सहमनी फखरें।
2: Dari sakpayante siyarga si program nga ninyot pin flagship Media Wave ka nga chay sa Akashwani Kargili kana zirinyot. Waxpo tusu turdun chenduk. Kasata program nga mazat ache nomoni fya program prachukhan point Zahra Banomir, program producer Gulzar Hussein.

0: मुल्ला दियु चिन जुदिस कोला छिक
1: कसा
0: राक्षस
1: जुंगती दरसम आंगनवाड़ी सेंटर जर बना सिर्फ दिका थुप्पे स्कूल जे था या
0: ओना
1: सिर्फ
0: थुप्पे
1: थुप्पे
0: स्कूल जे
1: स्कूल
0: तो
1: जे मैंने
0: कसा
1: मना पता में दिका साख चितंग मत चितंग मजर चस पमाना
0: ओना
1: दिका ठीक बस नॉलेज शिंगाती आम आवाम मना पता में
0: मैं
1: लिहाजा दियु मना जरूरी चीज शिगिन या आदरशिला जरे मिनिस्ट्रीज शुगबी फिंग से हो दियाओ
0: राक्षस
1: जिसका ECCE के थ्रू मतलब ट्रेनिंग दे ट्रेनिंग सो सेन या
0: ओना ना
1: मंगाती स्टेट लेवल ही मंगाती मास्टर ट्रेनर जो जिसमें कि CDPO न्यो चिन सुपरवाइजर न्यो चिन खो इस देख ना खुंती फर्दर जुरिस्डिक्शन आयोत खनुनी आंगनवाड़ी वर्कर उनला ट्रेनिंग दाचिन आदर शिला गचु गए ते सिले गचु ग फ्रुनला ओदे अनु ची दुख जेल स्टप चिन जे दे शुक बियन ची ओ जेस नारिक
0: कसा
1: फ्रु सगा गचु ग सा तंग मरगोशिन प्ले बेस्ड एजुकेशन जर खन पु गचु ग डिलीवर छचिन फ्रुनला यंगस्पा यंगस्पे का सा गचु ग चप तंग इन चिन जर
0: ओना
1: खनी दे
0: कसा
1: पूरा प्रॉपर शुक बु योतिन सुख जुया छाना दो आंगनवाड़ी सेंटर गांव में का तंग से यो दे पूरा बुकलेट पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट सो से यो छाना दो आंगनवाड़ी वर्कर उन्हें शंकु बसे दो तंग चा दो फ्रुनी सांस छाना लिहाजा दक्षण दिक नजर भी मतलब उद्यू इंजुआ कतिंगाती आंगनवाड़ी वर्कर उन्हें ना बेत या लास लेकिन गाती आवाम उनला अतामा उनला फ्रून ला अचनोमोन ला खुन ला पता उत्पन्न खुन आंगनवाड़ी सेंटर उनका सों से खुन अजस्ते चाचे इंजुआ कि
0: ओना
1: नाचा
0: जो
1: दी चुक शुभ भी होती सुख
0: ओना
1: 3 साल से 6 साल ये फ्रून ला दी चुका साख तंचा शिक प्ले बेस्ड एजुकेशन ने फिल्ला पूरा प्रॉपर क्राइटेरिया यो PSC किट्स जरे यंगस्पर्स यंबो यंबो साख पुकाचो ऑप्शन जरे दो चुक
0: यंस्पे
1: किट्स
0: यंस्पे
1: ओ
0: कतां
1: यंगस्पे
0: जहाँ जो ओना
1: यंगस्पा खोरंग दो
0: मार्शिस
1: चुक चोस होती सुख जुया
0: कसा
1: दो
0: कसा
1: मिनिस्ट्री खोरेस दे यंगस्पा नंगा तंगा प्रोवाइड बचिन
0: मार्शिस
1: चाहे अति दी आंगनवाड़ी वर्कर उन लजर नरिक मोबाइल फोन आ मिनिस्ट्रीज प्रोवाइड बस यो जो कि पोषण ट्रैकर्स टूल बे फिल इन पोषण
0: ओ
1: ट्रैकर्स जनरिक एक ऐप चिगिन जिया जहां
0: कसा
1: पे दिंग फ्रूट्स आ मियोस गुंडे फ्रूट्स आ मियोस दे हिसाब इक जग जगी पूरा अंगतंगा पता सचिन जिया मिनिस्ट्री
0: मार्शिस
1: पता सचिन अंगतंगा पता सचिन
0: ओ ना
1: कसा
0: जो बख्शी जो मन अर्दम मोस छन दिया ना यारिस दक्षा दी पोषण अभियान जरे मोस पहा जो
1: कसा
0: दिस कोला ची फेस पा वसे मोल ना जो दू चीन या दिस कोला माती गा मिमाशे ना फन केक मतलब चियो जरे दी पोषण अभियान इस कोला ची फेस पा वसे मोल ना बख्शीज नमो
1: कसा पोषण अभियान इंचा खुराना अति हिंदुस्तानी फ्लैगशिप मिशन ची इंचुया
0: कसा
1: फ्लैगशिप मिशन पे मकसद पुदियो दुकी अति दयानुक माल न्यूट्रिशन जरे जैसे कि अति दयानुक खचिक फ्रू सब चुक स्कैन अरी खचिक वेट टैंका में उचिन खचिक हाई टैंका में उचिन लिहाजा दो गप पुना ए छो छो छो छेन छेन चिक खुयानुक यंग इशू का तो छचिन चुक हेल्थ इशूज छचिन चुक दो पहला मतलब खुए स्टार्टिंग एज उनका खुए उदो डायग्नोस छनारिक फिर हम उसको अच्छी अपब्रिंगिंग दे सकते हैं उदो फिल्ला पोषण अभियान ही मेन दिया इंडिया कि
0: मेन खोए
1: ओ
0: दोन
1: कसा
0: पोदे इन
1: कसा
0: सुपा
1: कसा
0: हबो
1: कसा जिस
0: जैसे कि गा माल न्यूट्रिशन फ्री योद ना का तो दोन
1: ओ
0: ला हबो
1: कसा कसा
0: बख्शिस
1: दे अनु गातांगा मिनिस्ट्रीज GMD डिवाइस जरे ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस जरे डिवाइस रिक तंग सो जिया जो
0: कसा
1: मिनिस्ट्री खोले तंग सो गातांगा हर देनिक आंगनवाड़ी सेंटर का प्रोवाइड बुज जरे आंगनवाड़ी वर्कर उनला गाते दिला सुनतांग से खोने दून वेट चेक बचा हाई चेक बचा देख ना दोन गांगमा पोर्टल लिख तंग मचुया पोषण
0: कसा
1: ट्रैकर जखने पोर्टल लिखा
0: ओना जो
1: देखा पता सचिन जो की खो स्टंटेड दुगा वेट कम दुगा की उसका वेस्टिंग है खो लो बर्थ का तुम इंदुगा दोन सख पता जल्दी पता छाना रे दो जल्दी डायग्नोस हो सचिन जुया कसा
0: अच्छा देव ये इन सुपाया हाँ बहुत चीज़ वरना दूध अंगनवाड़ी वर्कर इस खोए वेट पोज़ा चेक बेन या देखा तांग चिन सुपाया
1: कसा
0: खोए हाई
1: पोषण
0: को
1: ट्रैकर मेन
0: पोषण
1: को
0: टेकर का
1: आंगनवाड़ी वर्कर ने अंगाती पोषण ट्रैकर यूज बना जितना खो इस पोषण ट्रैकर यूज बसे डिटेल उन फ्रूनी डिटेल उन योंखा नि फ्रूनी डिटेल उन कान लदिंग थुकपा तांस SNP जरे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जरे
0: होना जो
1: ओदे चीज पुथोप पना फिर ओदे डिटेल उन तंग मना अंगतंग आदि हिसाब का उसमें कहीं ऊपर नीचे की उतना एक दो न्या सही बचा छचनिया कसा
0: बख्शीस मखशिस नमो मन अर्दम मो जेरिस दी पोषण अभियान स्कोला दसुखला PMMVY जिन चोनो पा हजो
1: कसा
0: दी
1: कसा
0: PMMVY पोचिन नमो दी स्कोला चिंग फेसबुक पर से मोलना बख्शीस
1: कसा PMMVY जनरिंग अति प्रधानमंत्री मंत्रु वंदना योजना इनम्या
0: कसा
1: दियानुक वही है कि गति दियानुक पंगिरे में उत्खानी अमा सगा 5,000 थोपचिन
0: ओना
1: पहला
0: जो
1: चाइल्ड ला चाहे वो गर्ल इन चाहे बॉय इन दूसरा गति सेकंड चाइल्ड ला चाहे अगर कतो खो बोमो इन नरी ख्वा जरूर थोपचिन सेकंड चाइल्ड पो बोमो योमर गोशी इन पहला पहला से खानी फ्रू बोमो इन ना बुसा इन ना ख्वा 5,000 थोपचिन दूसरा ख्वा 6,000 थोपचिन जो
0: बख्शीस नमो मन अर्द मोमो छान दिया चुसला दी एंटी दी सोशल एनु पेंशन आयो तेन छाजो दी पेंशन पे स्कोर ला चेक फेस पा बसे मोलना नमो ता कि गा तिन यान खानु लर तक्स पा चो खाजो
1: कसम मैम यंग अच्छी दे अनुक सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम्स दो तरह के ओचिन एनएसएपी जरे चिची आई ट्रिपल एस जरे ओचिन जो या दे अनुक अति पेंशन चाहे वो पहला कैटेगरी जनरिक ओल्ड एज सगत होपचिन जो या छर्मा मी सगत होपचिन 60 एंड अबव मी सगत होपचिन 55 एंड अबव अने सगत होपचिन जो या।

0: दूसरा आती है विडो जेरे पेन विडो पेंशन जेरे स्कीम चीज, जिसमें विडो लोगों को पेंशन मिलता है। जनरिंग आती अमा खचिक जिनके हस्बैंड गुजर चुके
1: Oh,
0: हैं,
1: non, ne marque pas mettre à
0: मक्पा
1: la
0: गो
1: région, on a
0: छकन
1: beau
0: दो लाम
1: छकन.
0: थोप
1: Béwa
0: चिन
1: sont sourds,
0: ओकासा
1: disait-il,
0: कासा
1: on a.
0: ओकासा ओदो नला थोप चिन। वुमेन इन डिस्ट्रेस जेरे खचिक अमा ना जहनी परेशानी की उद्देन दी, और उनको कहीं फाइनेंशियल वो नहीं है, और
1: Kassa.
0: बिलो पॉवर्टी लाइन आयो खन उनला दी पेंशन पो थोप चिन। कासा
1: Ça.
0: यंग जनरिक अता डिसेबिलिटी जेरे पेंशन चिचिंग आयो, जिसमें 80% डिसेबिलिटी योतनरी 2,1,175
1: Rugodo me khanul la hawna mo.
0: ओ कैसा
1: Kassa
0: आया। 80%
1: marchis.
0: डिसेबिलिटी उत्खन सगा 1,175 पर मंथ थोप चिन चुकिया।
1: On
0: विडो
1: a.
0: पेंशन ला 1,000 थोप चिन, या जो
1: अच्छा
0: बस नरी ओल्ड एज पेंशन ला 1,000 थोप चिन। यंग दियानो यंग स्कीम चिची यो जो IEEE यंग एजेशन इंचा दो डिसेबिलिटी इन, लेकिन दे डिसेबिलिटी क्राइटेरिया 40% इकना ज्यादा उत्खन ला थोप चिन, जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम या पेने चंग यो में इनकम ही चंग सोर्सिक में
1: Mais t'as
0: तरी कसा।
1: rabona kasa. Marchis nomo 12 e semana pension scolaire de mo basse mo jo. Dia sos la matin scholarship zen tu ka jo yen ti dia yan social en chez nous de. D'une tic pes pa basse ngati prum charbana chun la mon na marchis.
0: कैसा जो अच्छी दिया नो गति डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड गति ट्राइबल अफेयर्स के अंडर गतंग दी स्कॉलरशिप पुथ ऑप्शन जो गतंग गंग में एसटी ट्राइबल छाना
1: कसा
0: गतंग क्राइटेरिया बाय डिफॉल्ट गतंग एलिजिबल सोंस इन एसटी छाना
1: ओना ओना
0: कैसा। और इनका दो क्राइटेरिया है तीन सो गया स्कॉलरशिप भी, कि पहला एसटी होना चाहिए, दूसरा ये कि उनका फैमिली इनकम 2,50,000 से नीचे होना चाहिए। लिहाजा इंडिया दो टाइप की स्कॉलरशिप में, एक प्री मैट्रिक ऑप्शन प्री
1: ओके
0: मैट्रिक स्कॉलरशिप आंदी ची गति 2,000 कुछ एलिजिबल होचु, जिसमें से 13,000 कुछ गंगाते पेमेंट बस इंजू दिया
1: कैसा
0: तुक्सला। पोस्ट मैट्रिक यानो 8,000 कुछ ज्ञानो नांगाती 7,600 कुछ गंगाती पेमेंट सो से। लिहाजा दू दिची की यहाँ पेमेंट यो मिस्टर मिनिस्ट्री तरफ से जैसे ही पैसा आता रिफंड फंड यो मत देखना, हम उसको आगे डिसबर्स कर देते हैं मैम। दयानु गया जरूरी इतले गिनती स्क्रून इज स्कॉलरशिप फिलहाल जब अप्लाई बिंदु पोर्टल लेकर जुया
1: कैसा
0: खुलना पता मचा इन चुकी। हाँ ट्राइबल या नो स्कॉलरशिप थोपा चुक, AICT या नो स्कॉलरशिप थोपा चुक, या रूरल या नो स्कॉलरशिप थोपा चुक, जब मना खुन इस पता मचा ना फ्रून इस ऑनलाइन अप्लाई बचना एक से ज्यादा जब स्कांग दे छाना
1: फार्म
0: खुई
1: हर
0: ओ
1: जगह का
0: कसा
1: स्कैन
0: कसा
1: था
0: ओ
1: नमो जैसे कि
0: कसा
1: सोशल कोरियंस का एक
0: कसा
1: कैसा बख्शीस.
0: और जो फॉर्म सोशल लांस काउंट से ना सिर्फ सोशल लांस काउंट है, क्योंकि दो चीज छिंदो
1: अच्छा
0: गया जर बना
1: ओनो ओनो
0: गति दी प्री एप्लीकेशन पो फाइनली सो से NSP जर गति पोर्टल चियो नेशनल
1: कैसा कैसा
0: स्कॉलरशिप पोर्टल
1: पोर्टल
0: देखा
1: ओनो
0: पता सचिन सु खोला मिनिस्ट्री है जब
1: कैसा
0: वेरिफिकेशन सचिन दे आओ
1: छचिन दे हाँ छाना
0: कसा
1: ओनो ओनो
0: छाना दो पता छाना रिखो डुप्लीकेट बिंग,
1: बीइंग
0: हालांकि खुन
1: खुश
0: एलिजिबल यो
1: ओना
0: कसा
1: एलिजिबल यूथ मगर खुश एंस कांस यूथ पर खुश
0: कसा
1: एंस कांस से दुख
0: दे
1: जरे ना
0: चक्कर अंगति फ्रून ला माना स्कॉलरशिप
1: सुक्रिबी ओम
0: थोपा
1: मामेर
0: बिंदु,
1: हाँ
0: क्योंकि
1: वो
0: मिनिस्ट्री डुप्लीकेसी तांसेंगा तां सीधा डिटेल पो कलें दो गया कि
1: कलेंडर
0: तो चोगा डुप्लीकेट दुख है जरे छाना दो
1: अच्छा
0: माना फ्रून एंडी का खुंती तरफ से गलत गलती छेंदो गया
1: ओना
0: ओ
1: ओना
0: दो
1: यू यारेस
0: जिग्दी
1: मन अर्दमो मोस नमो
0: कसा
1: कनिस चेस बनांगा टी शेर बना चुगुन बिचारा ला पता में था ता दी के नंग खोंगा बली के स्कॉलरशिप चिक थोप तुगा दी के
0: कसा
1: नंग थोप तुगा जरे खोंस मार्चा सुमस कांग सोंग
0: कसा कसा
1: छाना यारी दी अस्पेरा की दू मिनिस्ट्री अख ला जुक पिका पता छाना खोस आंस कांग से दुख जरे ना रिजेक्ट बात सो हाबो खे
0: कसा
1: फॉर्म तीनों रिजेक्ट सों
0: जी
1: दे
0: जी जी
1: छाना यारी दी के नंग टी शेर बना चुगुन दे अर्थ पसों की खोस कांग नका जगह मार्चा चिक चिक से कस कामर
0: कसा
1: उशन
0: कसा
1: छाबो
0: ताकि
1: बख्शीस
0: खोई उदय स्कॉलरशिप भी क्राइटेरिया अंडर खुन फॉल सों से खुन एक्सेप्ट सों से खुन ला स्कॉलरशिप टाइम ही का डिसबर्स छोक
1: On a jo.
0: कसा
1: Marchis. Marchis no moment nardemi mos chana la juk pika yang spera tik tinga tan khak chen duk pa ju. Dar sang ati ga pa shar bana chung chen na khong scholarship ska nga tha ju. Ska nga sana khong yang india miyong mistrol chi yang chi chachin. Marchis do la khong tik ba se man nardemo ba se kalier ba se yong mi fia khong ga chuk ba se khong apra luxury bar ko shin.
0: जितना हो सके पोर्टल का फॉर्म वॉर्म कहाँ सा हर डिटेल हर वेरिफिकेशन, चाहे वो रिसीप चिक तंगे कि गा दी चिक पेने गा दिन या नो मेन्यू जान या नो गा दी चिक छादनी फीस
1: खर्चा
0: पर
1: जो
0: दिया चिक योद जर खानून ओदो ने वेरिफिकेशन सही सों से सही यो ते मैंने खुआ इनका ने अमाउंट पो थप चमें जुया दो
1: मार्क्सिस
0: पहला नलता से रिसीप सुन सा हर चीज लता से टाइम टू टाइम अपलोड बचा देर गया अपना दीची की स्कॉलरशिप अगर का तो खुलना पेंडिंग हो चियो नरिक मिनिस्ट्री लेवल का जैसे ही अगर खुन सक सही कहाँ से हो, लेकिन मिनिस्ट्री पेने गाता डायरेक्टर लेवल का महले पायो नरिक दो बुली गोर्चिन बेशक
1: अच्छा ओना
0: कभी
1: ओना
0: आगे पीछे अच्छा
1: छचिन
0: चीनी
1: हा
0: खोई
1: बोना
0: सेमेस्टर आगे पीछे छाना स्कॉलरशिप पोटाई में का महले पना दो अच्छा
1: दो
0: चीनी
1: अच्छा
0: आगे
1: छचिन
0: पीछे,
1: हा
0: लेकिन
1: बोना
0: मिनिस्ट्री अनु अगर खोन एक्सेप्शन से उतनरी या खोन लपेने में थपचिक मना यों
1: नो
0: चमेन
1: चमिन हा बोना
0: कसा
1: बख्शीस. Bakşis ne moman erdemem bas çane yang lajuk bir kere yarız ngati program yan kanun la chi prinçi salat diskorla
0: Kasa
1: bakşis.
0: bakşis nga Anganwadi center ibar yan ok ngati diya yoti ya bakşis supplementary nutrition zere ngati thukpe school zere tha supplementary nutrition in incha kurang supplementary generic additional
1: Kasa.
0: Diya ok ngati Anganwadi center ikka phru saga holistic upbringing.

0: Banking fielda nga tis khunla invite basinya incha khurang ministries nga tanga zan puchin so do chiz thopchin anganwadi center ke ira ngas narik chik pukho supplementary nutrition jisme ministries zere nga ti director office ya nugna nga ti pura team se milkar meeting so se diun decide bas nga ti pura menu jo se jo ya nutritionist sakhyon se expert sakhyon se ki zan pen chi umar gushin ga cham chi kap jo umar gushin diun sakangmal ta se nga ti pura menu fix yo jo ya anganwadi center ka pura 6 din monday to saturday gajagachi tangmar gushin zere lihaza ode basis ka khun langanwadi center ka zan puthup chin yams bela chi zanari gichik do sal song sen zanari ge angati pura sugar completely ban base ju angwadi center sai ka jab
1: nangati halba khara tang ma pin
0: habu da pura tang ma ju jagri ono replace base ju ya
1: ta chana ga ta kola kola pata chin do peki no mo ki ngata kola kola sna pa se zan ni ka logo no habu malap tu shi do sur shiot pin ju ki ngati api aponis cha cha cha zat pin zerin chabo jese ki mailers ta sanganori center ne ka di chat zere tangando dun call zere de habo
0: don gangma nutritionist experts sun ngate advice pas khyong selta sir gap puna di chis pa phing sen ya ya rang zan nari diang nok sugar po ngate skura mi ka matlab jaggery ka ngate jese convert bas du de kana in ki sugar zere ringa tip shun ya no intake mana zyada son se
1: zyada habo daksa
0: man ka uncontrollable son se du kasa
1: mana daksa lo balo khimo di sugar patient zere bp zere khimo bi habo tasanga tanga mana millets years in chi naning shinga tanga pura ngati ministries den ngati pradhan mantri Narendra Modi sahibis har jaga millets years zere mangati kesan gan achinomon ha jo saget patang khonla di jane ka zor tas ki millets top ha dikena ngati bp zere sugar zere dun normal shin chu ju malap nyen me hesa ponga tanga dia in chu pa ju gan ngati ata pu ni school ni ot pinang jese bro zere cha zere chese zere yang jane ka ngati lokse
0: आंगनवाड़ी सेंटर साइका पोषण वाटिका जरे शुरू बस जुया पोषण वाटिका जनरी छस लजिन छस लोकल छस तप्पी फिलहाल एक अलग से फंड जो की हाँ वाटिका चोस जरे देश हाँ से सुनवा दे कन फ्रून ला देने कन क्यों से देने का यूज बसे तंग में फिला दो तुक्षी गांग शुरू बसे जुया कैसा बख्शिस यंग दिया नो दी इंटी प्रोग्राम में थ्रू नस गति खानून ला सम सगा रिक्वेस्ट एक बेट की जितना हो सके गति आंगनवाड़ी सेंटर निका फ्रून सा खर्चा जुया दून सा लाभ लें चाहे को चाम चिक जानी बारे इन नांग चाहे वो सा कचुगा तंग चीन कचुगा इन आंगनवाड़ी वर्कर लगाती दो प्रॉपर ट्रेनिंग सोच जुआ मिनिस्ट्रीज गता कहीं से भी कोई भी प्रोविजन चीज से मिंदुक की हाँ वैदिक अंगत जरूर की दू कम दुख दू ज्यादा डेंग अतंग जर बस सूरत खैरिक पो की अंगति आंगनवाड़ी वर्करों ने सैलरी स्कोर लहा कि खुल ना माना इनसे दुख जरे जुया बेशक दो माना डेंग दुख दे कलास डुलें दुख जुया अति सेक्रेटरी सर मैम पा खुन सा डिस्कस बस है वो दे चीज पो इन लेकिन डेंग नुमा जंग स्पेलर चीज ऐड जरूर बो की अति आंगनवाड़ी वर्कर उल्ला ऑनरेरियम पुना थोप जुया दोन यंबो यंबो इंसेंटिव जरे चीज यों चिन छा ना दो खे लस पिका खुआ पिने थो में छाचिन जुया खोज जैसे कि दिन PMMVY जनरिक होम विजिट बसे खांगमा दी यूल प्यानो खो कुरी रहा यूल प्यानो खानी यूत खानी जितना भी प्रेग्नेंट मदर यूत खोज PMVY का रजिस्टर बस खुआ दो खुरी अलग पिने थो चिन जुया छा ना रहा साम चिक दिन दा इंटरेक्टिव ओ बना रिक दे सब के इंसेंटिव आयो तें चु कसा छा ना ऑनरम पिका प्लस खोन लोन ला इंसेंटिव आ थो चिन चु जुया चाहे वो पोषण ट्रैकर फोन पे अनु फे खोरा इन नरिक आंगनवाड़ी सेंटर पे कदी शु सक्षम ओ रेस भी से टाइप बस तंग मिका खोरा यहां पे थो चिन चु जुया कसा दस ला इंशाल्लाह अति आंगनवाड़ी वर्कर उन या आंगनवाड़ी सेंटर उन दो नंगति युलपान सपान सख लोग से दी सोगा दी चीज पो ठीक बस स्टूल नरिंग आता हम अमन नरगला छो गया यहाँ कैसा कम्युनिटी इवेंट जरे कम्युनिटी बेस इवेंट जरे गति हर महीने उनको दो बार छछ सिंह सुख जो है जिसका भी अलग उनको मना फंडिंग होते हैं सुख दियुंबा नरिक बड़ा में ओ आंगनवाड़ी सेंटर का दो चीज छछ सिंह नरिक दिंग दिया उनको दी यूल पे आंगनवाड़ी सेंटर पर चाम चिडुल लें दो चाम चिडुल बिंदु खुआ चाम च इशू दुख या खेस बना अतामान यों से पता बना कम्युनिटी पंचायत इन CDPO सुपरवाइजर एक इंटरेक्शन
1: जितना
0: कैसा मैम या अंगति दू मैम सैम जो है सीवियरली माल न्यूट्रिशन

0: देखने को मिला। उम्मीद किया जा रहा है कि ये रिक्रूटमेंट जो है यहाँ के जवानों के लिए एक बेहतरीन लाए अमल बन के साबित होगी। तो वहीं इस मौके पर SP द्रास का जो इश्तियाक अहमद जो है वो खुद सुबह से मौजूद रहे, और उनके अलावा SHO अब्दुल्ला और पुलिस के कई ऑफिशल्स जो है वो आज के इस मौके पर मौजूद रहे, जहाँ पे आज SPOs की 26 पोस्ट्स के लिए भर्ती जो है लाए अमल में लाई गई।
1: डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करगिल इस मीमा सुन मलदुक्स पान दोना सरहिया पान ला दांग दरिंग हुनमेद लछा दियों चा बसर गम सुन ना लोमा ने अनु छी थिक प्लस के दियों से शरूत जिक्समो ने चा नजम से शंग बसे दुख जरे इशू हुआ बसिन दियो नजम से मीमा सुन इस त्रोलुक्स पुर तनपुर शे मीनर गम से जुर ना लोमा ना थगरी दुख से सरहिया पान ट्रैकर उन कैंपर उन दोना पिकनिकर उन ला सुर सुर चन मल सा उन सगना थगरी दुख जरिन दोना मलदुक्स मीमा सुन ला शंग बसे दुख से छून स्केट पिस होते हैं त्रोलुक्स चन मल सा का फखरा खेरजरीन दी मीना इंतजामी अलग थुत बसे अफवान सागिकस नाम हम बोझ जरे एजुवांग बस यंग गाजते इमरजेंसी सोम जोस्ते मीमासुल्ला डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर करगिल फोन नंबर 01982950502 दुना मोबाइल नंबर 8082743220 का फोन बोझ जरे एसरीन जिला पुलिस जंस्कारी छोड़ना फ्रोतखन इतले नजम से SSP लाहुल स्पीति छोड़ना फ्रोतखन इतला पुनाथे से जंस्कार न मनाली लंपु जिसपे मलसे का शरू दियोंचा अज बसे गाड़ी उन्हीं छायों पे मी न भन बसे इंजर है से रेन दियो नजम से खखुरु ने सरहियांस पौन न बैसा बखान उनला मनाली छोसला लंपु यंग बैसे मेत पा बैसा बामी इंजर है ओजर बसों यंग दिलम पे का बेस्पा उन्हीं सिंखों न यंबो मल यंखों में मी न बेस्पा उन सगा पुलिस ला लखथुत बुजरे इशू हुआ बस شمخمی عمله سوما گوا جنرال دیرش سیتی سے سٹرون لوک سے گرجا یونچی گیت کھن نمزے از غکلو نکا بودلم تو بی پیلاش مخمی اس چوکے گنگ حتان سین شمخمی عمله سنچو نچی گرسی گو بے کھاق پولی نری اپنا میڈیا نگرگن جنرال سیتی سے ٹیکنالوجی اسٹرولی کا یوں میوا سنیانو چتک بے بہارتی شمخمی نیتون پو انگو انچوکس خونو زین شمخمی ستسام سن دنس کے تنچی گیت کھن جکس مون ساگ کر تن پو بسل تلوک سن جاک چا انزرین از گیستری تی سٹرون لوکس پولا یت کھن گا جکس مون ساگ فیلا کاروائی رگیلا زوستا ان چتک جاک چا انزرین और सर सेट दीचे की पासपोर्ट इसको ना यूर्जा क्यों उसका खास को निनाल जो समा पासपोर्ट इधर खास ने फीस उन्ना दरी नफल लगा स्केट क्यों से इन फीस पे तालुक जब भी निजाम पे निनाल जो दर्शन लोमा सुमचु सोजरु गयो थान समा पासपोर्ट दुना पासपोर्ट तुन यांग लगे इन क्यों मिमीना दर्शन शमुल स्तों फेना सुम्स का मर्गोशा इंजरे ऐसे रे इन याना चोसल लोमा इशु सुम यो थान समा पासपोर्ट तुन स्वेटला यांग लगे इन क्यों मिमीना दर्शन स्तों फेना जब भी फोक्चा इंजरे जैसे दिवनिन मिन दरे सक पेपर की खबर नाइज इन शेज़ दबस या जू खुदानर सामानी फक्रियां।

0: में आज इक्तिसादी अमूर से मुतलिक काबीना कमेटी की मीटिंग नई दिल्ली में मुनक्कद हुई। इस मौके पर कई अहम प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराओं के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी है कि रामबन जिले के रामसू इलाके में 810 मीटर लंबा वायाडक्ट मुकम्मल किया गया है। इसके अलावा 3.5 किलोमीटर लंबा 8003 टनल भी मुकम्मल किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में शाहराओं और सड़क राबतों को दवाम बख्शने के लिए वजीर अजम नरेन्द्र मोदी और मरकजी वजीर नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि इन दो प्रोजेक्टों के मुकम्मल होने से शाहरा पर सफर करने वालों के लिए आसानी पैदा होगी और श्रीनगर और जम्मू के दरमियान सफरी वक्त में मजीद कमी आएगी। 3 जुलाई को शुरू होने वाली इस साल की सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में यात्रियों का पहला जत्था जम्मू से गुफा की तरफ रवाना होगा। यात्रा के आसन इनेकाद के लिए मुख्तलिफ सतहों पर सलामती समेत तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में गुफा में हाजिरी देकर वहां पर प्रथम पूजा में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ महकमे यात्रा के बेहतर इनेकाद के लिए मुख्तलिफ महकमों के साथ तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। इधर डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर वीके भिरदी ने आज श्रीनगर से नवयुग टनल तक शाहरा का दौरा किया और यात्रा के ताल्लुक से किए गए इंतजाम का जायजा लिया। बाद में हमारे कुलगाम के नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
1: जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है, आज वो उसका मुआयना करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि कोई भी कमी पेशी होती है तो उसको लूपहोल्स को प्लग करना और उसको और रिफाइन करना अपने रिस्पॉन्सेज के लिए। जम्मू कश्मीर पुलिस में ने जो अलग अलग जो ट्रांजिट यात्री कैंप्स हैं वहाँ पे उनकी फैसिलिटेशंस के लिए लोग मुहैया करे गए हैं। और इसी के साथ साथ आपके जरिए मेरी बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि श्राइन बोर्ड की जो साइट है उसमें भी जो डूज डोंट्स और जो हिदायतें हैं उनको पढ़ने अच्छी तरीके से। मेरी गुजारिश है कि जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं इन सारी जो हिदायतों को अच्छे से पढ़ लें ताकि उनकी जो यहाँ पे यात्रा है अच्छे ढंग से हो जाए।
0: दरियासना ट्रैफिक पुलिस ने यात्रा के ताल्लुक से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक यात्रा के दिनों के दौरान बड़ी गाड़ियों को शाम 7 बजे के बाद काजीगुंड से जम्मू और उधमपुर से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, तहम छोटी गाड़ियों को रात 11 बजे चलने की इजाजत होगी। सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना ऐतू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान खान साहिब, हजरतबल, पामपोर, सोपोर और जैनपोरा असेंबली हल्कों में तरक्याती मामलात और अवामी खिदमात की दस्तियाबी का जायजा लिया। इन हल्कों के अरकान असेंबली ने अपने अपने हल्कों के मसाइल वजीर मौसूफा की नोटिस में लाए। वजीर मौसूफा ने उन्हें यकीन दिलाया कि उजागर किए गए तमाम मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। ज़िराअत के वजीर जावेद अहमद डार ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान अपने मातहत महकमों की तरफ से अमलाए जा रहे तरक्याती प्रोग्रामों और कलीदी नौवियत की फ्लैगशिप स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी कि वह ज़ाती तौर पर तमाम प्रोजेक्टों पर नजर रखें और हुकूमत के मुनसिफाना तसरुफ को यकीनी बनाते हुए इनकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। नए तैनात किए गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ ने उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए फौज की जदीदकारी में सुरत लाने की जरूरत पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में 31वें फौजी सरबराह की हैसियत से चार्ज संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फौज सरहदों पर मुसलसल चौकसी और निगरानी बरकरार रखेगी और कौमी सिक्योरिटी को दरपेश खतरात से मुअसर तरीके पर निपटेगी।
2: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो। हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटीज में सेंसस 2027 के पहले मरहले के तहत हाउस लिस्टिंग का अमल कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ है। इन दो यूटीज के लिए चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर जम्मू कश्मीर और लद्दाख अमित शाह ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यह अमल पूरी तरह से डिजिटल तरीके को इस्तेमाल

0: पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी अनवर खान ने इस इकदाम को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए इसे नौजवानों के ख्वाबों के लिए सिमे कातिल करार दिया है। उन्होंने मजीद कहा है कि यह महज एक पॉलिसी तनाजा नहीं है बल्कि इंतजामिया और नौजवानों के दरमियान बुनियादी तौर पर एतमाद तोड़ने के मुतरादिफ है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा ने आज पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में सुरमे सनाकड़े जवान डोगरे नाम का डोगरी गीत जारी किया। इस मौके पर कई दीगर लीडर भी मौजूद थे। दरिया सना सत शर्मा और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने आज एक मीटिंग में पार्टी के प्रोग्राम और बीजेपी के कौमी सदर के आने वाले दौरे के ताल्लुक से इंतजाम का जायजा लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान आला तनवीर सादिक ने आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर मुतअद्दिद अवामी वफूद और कारकुनों के साथ मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने अवामी मसाइल और मुतालबात सुने। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत लोगों के मयारी हयात में बेहतरी लाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। अनंतनाग पुलिस ने पिछले छह महीनों के दौरान मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई को तेज करते हुए एनडीपीएस के तहत 345 मामला दर्ज किए। 372 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया और 2000 किलोग्राम नशीली अद्वियात को तबाह कर दिया गया। विकसित भारत रोजगार जमानती और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबी जीराम जी एक्ट 2025 आज से पूरे मुल्क में लागू हो गया है। इस एक्ट का इतलाक मुल्क के देही इलाकों पर होगा। यह एक्ट 20 साल पुराने एमजी नरेगा की जगह ले रहा है। देही तरक्की की वजारत ने इस एक्ट की मुअसर अमलावरी के लिए रवां माली साल के दौरान 9,56,92,00,00,00 रूपये की रकम दस्तियाब कराई है। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:23 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
1: सामीन आदाब, आज का तबसरा लेकर मैं सुहेल भट्ट हाजिर। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 आज यकम जुलाई से नाफिज हो गया है और इसका बाजाबता इतलाक कल आंध्र प्रदेश से होगा। देही तरक्की की वजारत के मुताबिक ये एक्ट अहल देही घरानों को मौजूदा देही रोजगार के फ्रेमवर्क के तहत फराहम करदा 100 दिनों के मुकाबले में 125 दिनों तक उजरत के रोजगार की कानूनी जमानत फराहम करता है। वजारत ने कहा है कि हमवार मुंतकली, बरवकत उजरत की अदायगी और नए फ्रेमवर्क के तहत कामों के बिला तातुल निफाज को यकीनी बनाने के लिए रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को 95,692.31 करोड़ रुपए की अबूरी रकम को पहले ही मुख्तस किया गया है। देही तरक्की की मरकजी वजारत का कहना है कि हुकूमत की तरजीह इस बात को यकीनी बनाना है कि कोई अहल देही कारकुन एक दिन भी काम के बगैर न रहे और मरकज और रियासतों ने रोल आउट के लिए इंतजामी, माली और तकनीकी तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए मिलकर काम किया है। हुकूमत ने कहा है कि मौजूदा EKYC से तस्दीकशुदा जॉब कार्ड उस वक्त तक दुरुस्त रहेंगे जब तक कि नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड्स जारी नहीं किए जाते। इसने मजीद कहा है कि ग्राम पंचायतें कुदरती वसाइल के इंतजाम, पानी के तहफ्फुज, ज़िराअत और इससे मुंसलिक सरगर्मियों, देही बुनियादी ढांचे और खवातीन को बाइख्तियार बनाने जैसे शोबों पर तवज्जो मरकूज करते हुए स्कीम के निफाज में कलीदी किरदार अदा करती रहेंगी। वजारत के मुताबिक 29 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने एक्ट के लिए बजट के इंतजाम किए हैं जबकि 24 रियासतों ने अपने इस प्रोग्राम के तहत रियासती स्कीमों की निशानदेही की है। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट देही रोजगार का एक तारीखी कानून है। ये मनरेगा की जगह लेगा जो हर माली साल में जरूरी मजदूरों की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए चोटी की बुवाई, कटाई के मौसम में बेरोजगारी पर काबू पाने में मददगार साबित होगा। इस कानून में ये बात कही गई है कि अगर हुकूमत मुकर्रर मुद्दत के अंदर काम फराहम नहीं कर सकती है तो इससे अलाउंस अदा करना होगा। कानूनी उजरत की शरह रियासत के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। नजरसानी शुदा योमिया कम अज कम तकरीबन 300 रूपए से लेकर 450 रूपए की गई है। जम्मू कश्मीर, हिमालयी और शुमाली मशरकी रियासतों के लिए फंड शेयरिंग पैटर्न 90 और 10 के तनासुब से है और दीगर तमाम रियासतों यूटीज के लिए ये शरह 60 और 40 है। नए कानून का निफाज अपोजिशन जमातों और देही रोजगार के कारकुनों की तनकीद के दरमियान हुआ है जिन्होंने मौजूदा देही रोजगार की जमानत के फ्रेमवर्क में तब्दीलियों पर तश्वीश का इजहार किया है लेकिन मरकज के दलाइल मुद्दलल हैं और ये कि नया निजाम मांग पर मबनी रोजगार की नौयत रियासतों और पंचायतों के किरदार को मौसर कर सकता है और लागू करने के लिए मुनासिब माली वसाइल दस्तियाब होंगे। हुकूमत ने बरकरार रखा है कि नया

जय हिंद। फिल्मी नामों पर मबनी प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए सुनने वाले तमाम सामिन के खिदमत में मेरा खुलूस भरा आदाब। तो आइए सामिन, संगीत से भरे इस प्रोग्राम के आगाज में सुनते हैं फिल्म दरार से एक गीत, जिसे गाया है अभिजीत और साधना सरगम ने। गीतकार है राहत इंदौरी और संगीतकार अनु मलिक।

0: अभी आपने आरिजू फिल्म में कुमार सानू अलका याग्निक और साथियों को सुना। लीजिए दोस्तों, प्रोग्राम का अगला गीत बरसात फिल्म से सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति के आवाज़ में बोल है समीर के और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने। पहले सुने ये छोटा सा वक्फा।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आपने कर्मा फिल्म में मनहर सुखविंदर सिंह और अनुराधा पोटवाल को सुना। लीजिए दोस्तों प्रोग्राम का अगला गीत कुर्बान फिल्म से उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल की आवाज़ में। पयाम सादगी से लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है आनंद मिलिन ने।

दोस्तों, इसी नगमे के साथ है आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: अभी आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे फौजी भाइयों के लिए मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी कारगिल से बोल रहे हैं। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में खबरें रिले करेंगे। रिले का थोड़ी देर इंतजार कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंड से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
2: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
3: वीबी जी राम जी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से

0: की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जनभागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत

0: और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा वीथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं।

0: श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कॉन्गो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight.

0: चन यम्बो यम्बो यंग यरंग जरना का तो काफी अति जिले करगिल अनुना खास कर दी यंगलू जरूरत जो गतिस फॉक्स फॉक्स जो फॉक्स का यरस काफी चल चल दो बस चना दी सबक तंग चन यम्बो यम्बो यंग ची ची लाज रिबस जो गतिस
1: ता सबक तंग चा देखने मने मां सी चांग माथो जी देखने का यंग लो 1980 अनु एडल एजुकेशन ता एडल एजुकेशन सो बरा सा ता मैंने छान ला मैंने आपो चाहिए सवाल था मैं देव मैंने बड़ा मुश्किल मैंने काफी मैं दुश्वार पिन मैं आपो तो छोचा किताब छोचा सब चा लेकिन बाकी निमा दल बजे देगा तुस तो तुस हो बना दक्षिण का मंदी अलाका दी ने फल लेते पिन तो मैं छोस को ना दस पर चिकन सफाना बुलाग नीचे सुपरवाइजर ले पिन एडल एजुकेशन तेनी शाख चाह लामा चाह दे चाह तनखारी तंग से कौन मजहबी तैयार खाता दर्सी तालीम दी तंग चुप कोमे कापी शोकबुन सो दिन थवत तने देव संग तुस पियंग तुसी तोपा तने गति दिया अलाके तने छे दरबाने मन फोक सॉन्ग मन मशहूर गति करगिल घोरा मन मशहूर है सनला फोक सॉन्ग से पिया छे दरबाने गति दी फ्लू न पता छे न पर कर से एक भी कर से अर से कर दर कान दिन अल शुरू शुरू सोत पसारी त्यो तो मन दी अलाका गमे मन फ्लू पिन सो पदन स्टोन स्टोन जम इस्लामी हो जाना तो स्टोर स्टोर से मन महादूत सो से चिकता न लगे सुदु चिकता लु अला के लुक दे सना छाना ज्यादा टू ले सो से ना मा लु यत खान मा चिकता लोंग बे लु यत खान मा मुत पिन दे सना दा सना फेर एक में अपो रहीम जर खान मशहूर गरबा मोहम्मद जर खान अपो जो हुसैन खान जर खान ओ तो जलील जर खान या काचो मुसा बे हकनी जर खान मन दोन मन हुजानिन दो गांव में आना गा दे चिकता गांव में लु गांव मा रिकॉर्डिंग चो चिया दे सस पे पिया गा दे लु जुक पा सस पे सो रे जरे ना तो गामा माने किसेट जो से माने किताब जी फिंग जोनस किताब जी 133 लु यहां जानयांबो किताब जी फिंग पे चिया दे बने गरा जोग मा जोग चिया दे बने 50 40 50 हजार जी चे सुदे जना छाना एकेडमी थ्रू को ना रोख जो एकेडमी छाप पांच सो कॉपी छाप जो से तम जो है किताब प्रोडक्शन दो प्रजर दे चिकता ने फोक सॉन्ग सब से कर चिकता बोले मैं प्रजर सॉन्ग से ता दक्षिण में बोधियां यो इन ना कोई जैसी तर्जुमा चो ना ये यंग स्पीपियां गाना यो ते के ना किसा टांग ते हम उदय सास बन गया था पिंग मायन चो दे
2: कसा ता दी स्वयं इरां अति चिकता नंग लदाख से लो देजम से गुआ में देता लेपी लो इरां देंग अति स्पेरा खचिक दो सोजों अति पुरी स्कात को ले देना गाजरे चोचो जरबा चो या
1: किताब चीन लेकिन चीजें बने चिकता नहीं तो मैंने जोश पर स्टोर बिजिक्स में छाने को सुना लड़ों का छाप चुस्ता उसपे दो प्रेशर
0: दरे छाप सोच से दी शुभ मिलता नहीं था जो
1: मैंने शुभ ही जी दक्षिण दे शुभ मिल पांच सौ कॉपी में दिखा रहा हूँ शायद वो करीब
2: आने वाले हैं दक्षिण लूज़ रिंग से की दक्षिण कल्चर एकेडमी थ्रू बिंग से
1: बिंग से वो कर सकते हो जाएंगे कैसे जूस भी कौन सा
2: लगी
0: तो चौगा पहन मैं देखने में भी शायद है कैसे तादी लू ना नू ना यार गा सोर जू या गा सोर जी सोर दे
1: मैंने लू तो मैंने देमो मीनिंगफुल मैंने क्षमा दे था मैंने मिसल दो चीज कर
2: बरू शाहर चौसन या चिकन शाहरा
1: अलीबाग से